हिम्मत और ज़्यादा बनानी चाहिए, तो इसलिए हिरण का शिकार इसीलिए हो जाता है कि हिरण यही सोचता है कि मैं मुझे पे शेर ज़्यादा बलवान है और मेरे पे हिम्मत नहीं, जबकि वो ज़्यादा

0: ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।
1: हाँ, जो गाने के बोल हैं वो है, मुझे अपनी शरण में ले ले राम।

0: हम सब ये सुंदर से गीत को सुने और आज का विषय जो कि है सुख में सब साथी दुख में ना कोई, तो इस बात पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं ना, कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। और एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ कौन मिलते हैं?
1: दुख में कोई एक ही मिलता है,
2: सारे साथी कम।
1: और जो एक दुख में मिलता है वही सोचो आपका साथी है। इसलिए अगर आपको साथी की पहचान करनी है तो आपको दुख के समय करनी होगी,
0: तभी सही साथी का पहचान आपको मिल पाएगा।
2: जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल है।
0: बढ़िया साथी, शांता जी ने कहा कि बढ़िया साथी मिलना, और यानी कि जो संकट में यानी कि जो दुख के घड़ी में आपका साथ दे वही साथी आपका अनमोल कहा जाता है। राजेंद्र जी, आज हम सब अभी धीरे धीरे और कार्यक्रम जो कि सूरीनाम के लिए कुछ कहने वाले हैं हम सब, पर शांता जी तो माइक्रोफोन के सामने अब खड़े हैं और उन्हें कुछ कहना है। शांता जी, क्या आप संदेश दे रहे हो? क्या है संदेश आपका?
2: शांता जी खड़े नहीं, शांता जी आराम से बैठी है
0: माइक्रोफोन के पास
1: संदेश के लिए एकदम।

0: सहित हैं, तो बताइए शांता जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
1: अभी राजेंद्र के मुख से भी हम सुने श्री भगवान कृष्ण के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, जीवन में क्या करना है तो रामायण से सीखिए, और जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत में से सीखिए, और जीवन कैसे जीना है ये श्रीमद् भगवद गीता से सीखिए।
2: अच्छा संदेश है, पर वैसे तो कार्यक्रम हमारा धार्मिक के ओर ज्यादा नहीं जाता है, नहीं, पर संदेश है कि उससे सीखने को। राजेंद्र जी, आज हम सब के लिए अभी तो सूर्यनाम का गाना जरूर आप सुनाने वाले हैं कि आज नहीं सुनाएंगे?
0: नहीं, सूर्यनाम के गाने से पहले हम एक प्यारा भरा नगमा और सुनेंगे, राम रमैती रमैती।
2: चलो सुना देते हो, पर इच्छा वही हो रहा है, उसी कारण मैं कह दिया कि
0: जी, अभी जरूर,
2: हम सब के हमारे सुनने वालों भी वही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं।

0: से बड़ा उनका नाम। मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी भारत देश से संदेश भेजे है सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी ने ये संदेश भेजे है कि भाई दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है। यानी कि दुनिया में सबसे भाग्यवान कौन है राजेंद्र जी?
1: दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो सुख में किसी के साथ, दुख में किसी के साथ रहता है।
0: नहीं, पर वो तो होगा वो तो होगा, पर सुरेंद्र चौधरी जी जो यहाँ संदेश को भेजे है कि दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है।
1: हाँ, ना जरूर।
0: अब कल रात्रि में हम सब क्या खाए?
1: खिचड़ी
0: बना कर स्पेशल वाला। पर अब ये हो जाता है कि जैसे संदेश भेजे उन्होंने कि जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है और बिस्तर के साथ नींद भी है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि धन के साथ धर्म भी है। तो भाई सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपना संदेश को हम सब के लिए यहाँ भेजे। हम सब भी और कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, पर शांता जी कुछ लिख रहा है, हमें कुछ कहना थोड़ो है। हम सब जो गीत हम सब के लिए खोज कर को रखे हैं उन्होंने पायो जी मैंने, वो सुना दो।
1: बहुत अच्छा गीत है।
0: इसी गीत को गाए थे ना?
1: जी जी जी जी

0: जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: आप धन्य है।
0: तो बताइए शांता जी, आपने राम रतन धन कैसे पायो? सूरीनाम से जब आप यहाँ आए, पहले आप सूरीनाम में रहे होंगे ना?
1: मैं सूरीनाम में रही। हाँ।
0: तो आप कब वहाँ से आए? थोड़ा वहाँ का थोड़ा वृतांत बताइए शॉर्ट में। आपने राम रतन धन पायो जब आप नीदरलैंड आए, तो आपने राम रतन धन पायो की
1: उसी राम रतन ने मेरी को यहाँ हॉलैंड में ले आया।
0: ओ तो बहुत अच्छा, बहुत मोई। संजय जी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे राम रतन धन की ओर।
2: राम रतन धन पायो, विश्वास और प्रेम। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। ये संदेश जो भाई शर्मा जी ने हम सब के लिए भेजे, तो भाई आपके संदेश को सुनाया गया, और जैसे कि राजेंद्र जी ने इस बात को पूछे कि हम कैसे राम रतन पाए, तो राजेंद्र जी कैसे बताऊं, पहले के परिस्थिति तो कुछ और था और अब के परिस्थिति कुछ और है,
0: तो वो सब राम रतन धन से ही हुआ है,
2: बगैर उसका नहीं हो पाता कुछ। इसी कारण हम सब यहाँ उपस्थित है, और आज सबसे बड़ा बात ये है कि हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के और ये कार्यक्रम को करते हैं कि दुनिया के हर एक कोना में लोग सुन सके, और कुछ ज्ञान के बातें इसमें रखा जाता है, कुछ संदेश इसमें रखा जाता है। यानी कि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश से हमारे जीवन के ज्योति में जो चल रहा है उसमें कोई प्रकार से प्रकाश आ सके। हम देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे और रखे हुए विवान, और उन्होंने एक संदेश भेजे है कि उसे इस कार्यक्रम को अच्छा लग रहा है। राजेंद्र जी
0: क्या? तो विवान अभी बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए एक हमें लगता है कि एक हमें बच्चों
2: कुछ करना चाहिए।
0: हाँ, तो बच्चों के लिए एक
2: शांता जी आपको क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लोग भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम।
2: हाँ जी, क्योंकि बच्चे ने व्हाट्सएप भेजे कि कार्यक्रम उसे अच्छा लग रहा है, तो चलो कुछ राजेंद्र जी क्या है हमारे बच्चों के लिए जो इस समय को कार्यक्रम को सुन रहे
0: बच्चे।

0: बताइए संजय जी, आप बच्चों के बारे में कुछ बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम बता रहे थे, अब बताइए।
1: वैसे तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे सभी को तो यहाँ स्टूडियो में भी और गंवाने लगा, तो हम इस पे क्या और रख सकता हूँ। बस यही रखना चाहूँगा कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। हम बच्चों के लिए ये सुंदर संदेश, ये सुंदर सा गीत को रखे, पर क्या हमारा घड़ी का रफ्तार भी लगातार चल रहा है, और आज हमारे सूरीनाम देश के जनता यानी कि सूरीनाम का गीत को रखेंगे आप कि नहीं?
0: हाँ, आज बहुत दिनों से हमने सूरीनाम के गीत का समय कम मिल रहा था, तो आज हमने समय निकाला तो जरूर सूरीनाम देश का, आपका जो बहुत ही प्यारा सूरीनाम हमारा प्यारा देश गीत है, उसको जरूर रखेंगे और एकदम रेडी है। अब हम चाहेंगे कि सब लोग इसको बड़े अच्छे से सुनें और इसका आनंद उठाएं।

0: और आप
1: भाई राजेंद्र जी आपने गाना भी गाना शुरू कर दिया तो भाई हाँ बोले है लखस्ताद से भाई गहार जी भी फोन करके बोले कम से कम हमार बारे में तनी से बोल दिए कि हमार शहर से यानी कि आम्स्टरडम से वो और कहते हैं कि ये बहुत और अच्छा लग रहा है उसके ये कार्यक्रम में। दोस्तों हम सूरीनाम के बारे में सूरीनाम का गीत को सुने तो पुराना ख्याल तो आ ही जाता है, पुराना ख्याल आ ही जाता तो शांता जी भी यहाँ पर बैठे हुए। शांता जी शायद आपको ख्याल आता होगा कि पहले और जाकर के वर्षा के टाइम पे खेती में कैसे काम होता रहा, सब तो बुड़ जाता था कहीं काल के पर कहीं कहीं तो नहीं बुड़ते थे, तो आपको कुछ उसके बारे में अब ख्याल है कि भुलाई गए सब?
2: ना सभी ताजा ताजा याद है,
1: अबे ताजा ताजा याद है,
2: ताजा ताजा याद है। जब हम यहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं ना स्नेल वैक पे, तो हम ताकि यहाँ कैसे खेती बाड़ी होवे, तब ये सोचते हैं कि सूरीनाम में हमारे साथ कि पानी बरसे तो वहाँ चांटा हो जाए।
1: हाँ सब बुड़ जाते थे ना,
2: सब बुड़ जाए, जितना खेती बाड़ी रहे सब खाना सब डूब जाए।
3: ये तो बड़ा अच्छा है शांता जी की आपको सारी चीज याद है और आपने खेत में भी काम किया है, तो बहुत अच्छा है आपका।
2: बाकी हम लोग खाते तो हमारे बाप पोल्डर बना दे रहा, ओमेगो बोट ढर दे रहा,
1: तो हम वो तो मस्ती भी आप लोगों खूब करत रहे।
2: बोट से हम लोग जाए खेल के जाए पाछे सौदा काटे, तो सौदा बोट पे ढाए, तो फिर आवे घर, तो घर सब तैयारी होवे। तो पहले के जमाने में रहा कि एगो ट्रक रहता जौन सब संझा के आवे सब सौदा उठाए के ले जाए तो बाजार ले जाए।
1: ओके हाँ ओके, कहते थे क्या बोले कोपमान, यानी कि जो सब्जी इकट्ठा किन के और ले जा करके और इकट्ठा करके और ले जाते थे। तो पहले के वृतांत में ऐसे ऐसे बातें होते थे।
3: तो अभी वो वृतांत नहीं है क्या? अब
1: वो नहीं नहीं वो होता होगा पर हम लोग राम जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ
3: हम चाहेंगे एक बार इस प्रकार का वृतांत जो आप बता रहे हैं सूरीनाम देश जाके देखना चाहते हैं।
1: ये तो हम सब बात कर चुके हैं, बस हम लोग के जहाँ मौका मिले तो हम सब यहाँ से सूरीनाम से फिर उसके बाद में निकेरी जरूर पहुँचेंगे। हम देख रहे हैं टेलीफोन दोनों के दोनों साथ साथ में बज रहा है, पर हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर पहुँच चुके हैं धीरे धीरे, तो हम लोग तार भी नहीं उठा पा रहे।
3: कोई नहीं, हम उसके लिए एक गीत का लागे छोटे ना सनम गीत
1: चला दो।

0: गाना को चला रहे पर और हमारे टेलीफोन पे कोई ना कोई हम लोग सब के नाम नहीं ले सकता है। मुफरा रामदीन जी जो बड़ा खुशी है और खुशी से ये कहते कि भाई मुझे ये ख्याल आ गया कि बुद्धू पासी यानी कि वेलखदा बे के रहने वाले हैं और वो भी और इसी प्रकार से और जा कर के खेती आदि करते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहे कि जो राम रमनी यानी कि श्री राम जी का गीत को चलाया गया तो उन्हें रामलीला का याद आ गया। दोस्तों ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं और आशा यही है कि आपको अच्छा लगे होंगे हमारे कार्यक्रम में जो गीतों के सब खोज कर रखे हैं। तो शांता जी है हमारे कार्यक्रम के विषय को रखने वाले हैं और जो सुविचार के रखने वाले बबली जी है और राजेंद्र जी जो पनील के पीछे बैठे हुए हैं। मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा यही है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे होंगे और आप इंतजार करते रहना।
1: प्यारे पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है कि हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया हुआ होगा। आप सब आपके सेविका और सेवक संजय राजेंद्र और शांता धन्यवाद सुनने के लिए। आप अपना ख्याल रखना।
2: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों को सबको मेरा प्रेम और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल। धन्यवाद। शुभरात्रि।

0: महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा
1: निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। रूबरू मिलने की मौका नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब अभी विषय की ओर बढ़ेंगे। पर
2: हाँ जी, अगर दिल ना मिले तो प्यार अधूरा होता है। अगर दिल ना मिले तो प्यार अधूरा होता है, चांदनी के बिना। हाँ जी, चांदनी के बिना चांद कब पूरा होता है। आपके सेवा में सेविका शांता जी उपस्थित हो गई है। मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम आप तलक पहुँचे। और देखे सुने हमारे कोलेखा साथी क्या कहती है, क्या कह रहा है।
3: भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और ज्योति का प्रकाश से प्यार नहीं। शांता जी, अभी जैसे कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक शायर किया, तो हमने थोड़ा सा उसका रिप्लाई देना चाहा। संजय जी को पसंद आया होगा।
1: यहाँ तलक की ये कार्यक्रम को सुनने वाले भारत में, भारत से।
3: हाँ, हमें भी कार्यक्रम का प्रारंभ करना है।
1: और कार्यक्रम के प्रारंभ पे तो कौन सा गीत आप चलाने वाले हैं राजेंद्र जी, क्योंकि कुछ मसालादार कार्यक्रम आज बन रहा है, जबकि विषय एक बड़ा मुश्किल विषय है ऐसे कि ना?
3: हाँ, ऐसा विषय है।
1: तो राम जी करे बेड़ा पार के ओर हम सब बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के सुनने वालों और कोई कोई में अभी मन उदास है। और पता है क्या हुआ राजेंद्र भाई, पिछले सप्ताह
3: बताइए क्या हुआ।
1: मैं तो घबरा गया था। मैं सुन रहा था रेडियो फाहोन और उसमें शांता जी ने बोला कि मेरा बकरी ने अंडा दे दिया।
3: बकरी ने अंडा दे दिया।
1: तो इस बात को सुन के अब सभी सुनने वालों बेचैनी से और इस बात के इसे सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, कि बस ये कैसे हो सकता है। पर उस ओर बढ़ने से पहले तेरा राम जी करे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए तो और बढ़िया रहेंगे। क्योंकि ये कहावत है कि संसार के सबसे सुरक्षित बीमा, शांता जी, सबसे सुरक्षित बीमा किसको कहते हैं?
1: फर से ही करें।
0: संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा।
1: बिल्कुल,
0: बस याद रखे और अच्छे कर्मों की किश्त ले और समय से भरता रहे तो बस ये जीवन आनंद ही आनंद हम सबके चलते रहेंगे। दोस्तों, सुनने वालों, आज का विषय हमारे माध्यम में भाई राजेंद्र जी जो एम्बेसी कौंसुलात से हम सबके सहयोग देते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जब मैं सुना ये विषय तो मैं थोड़ा चकित हो गया, थोड़ा सोचक में पड़ गया कि इसके बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं था और ये एक बड़ा मुश्किल विषय है। तो क्या आज ये विषय के बारे पर यहाँ प्रश्न हो जाता है कि शांता जी ने कहा है गत दिनों रेडियो पे बकरी ने दे दिया
2: अंडा,
0: खुलासा कीजिए, क्योंकि ये हमारे सुनने वालों भी बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि ऐसा आपने क्यों कहा।
1: क्योंकि बकरी अंडा तो दे नहीं सकता, एक वो बच्ची जो कही ऐसे ना, वो अपने मुर्गी का नाम वो बकरी रखी थी। हाँ, इसलिए धोरा धोरा गए बाबूजी के लगे और कहे मेरी बकरी ने अंडा दे दिए। तो उसका बाबूजी पूछा ये कैसे हो सकता है, तो कहा बाबूजी मैंने मुर्गी का नाम बकरी रखी है।
0: खुलासा हो गया दोस्तों। तो हम सब प्रवेश कर सकते हैं अपने कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश, और विषय जो हम सबको बताने वाले हैं हमारे भाई राजेंद्र जी, जो आज एक इतना मुश्किल विषय लेकर और हमारे विशेषज्ञ जो हम सब के लिए विषय खोज करके रखते हैं, तो हम उस ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र भाई, आप बताइए कि आज का विषय क्या है।
2: हाँ, हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वालों को मेरा हार्दिक भरा नमस्कार। और आज का जो विषय है वो है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जी के बारे में आपने हो सकता पहले सुना हो। अगस्त्य ऋषि ने एक ही तीन आचमन में पूरा समुद्र शोक डाला था। तो आज जो विषय है वो बहुत ही उत्सुकता वाला विषय है और इसमें बहुत गूढ़ जानकारियाँ हैं जिससे सब लोगों को इससे अवगत कराएंगे और उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं।
0: उस ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, क्या पता है कि आज शांता जी अपने पिटारा में, इच्छाधारी पिटारा में भर के क्या लाए, कौन सा गीत लेकर आए हैं?
2: हाँ, शांता जी जो पिटारा में लाए वो बहुत ही अच्छा गीत है और उसको हम अभी शुरू करेंगे।
1: जी, जिस पिटारा का मतलब, आपका मतलब कुड़कुड़ू।
0: अब दोस्तों, यहाँ आप कार्यक्रम में जब हम लोगों ने कुछ सोचे थे कि पिटारा और नाम रख दिया जाए, पर शांता ने उन्हें कुड़कुरु कर दिया।
1: कुड़कुरु ये सुरीनाम में प्रसिद्ध है ना,
0: कुड़कुरु ना,
1: कुड़कुरु वो दो दिल में रहता रहे है। एगो गिलासगत एंदा हप यदि देखतो दरो तो ओके बन कर दे, तो ओमे धर खास तौर पे लोग उससे मछली पकड़ते थे।
0: ओके, तो वो कुड़कुरु थे।
1: हाँ, कुड़कुड़ू।
0: कुड़कुड़ू पर तो इस पे प्रश्न आ जाता है राजेंद्र जी, क्योंकि हमें जो हमारे विशेषज्ञ है जो हमारे लिए और ये बना बना करके हमारे साथ और हमारे लिए देते हैं कि जो हम सब बात कर पाए उसके बारे में, हम क्यों ना पहले एक सुंदर सा और शांता जी का जो क्या कहते था पिटारा से कुड़कुड़ू बना दिए, तो ये पिटारा किस चीज के लिए होता है राजेंद्र जी?
2: पिटारा जो पहले सांप को एक बंद करके रखते थे छोटे, उसमें
1: जी,
2: तो उसको पिटारा कहते थे, मतलब सांप के रखने वाला, सांप को रखने वाला एक टोकरी, उसको पिटारा कहते थे। कि अब जैसे वो खोलता था तो एकदम सांप बाहर निकलता था, सब लोग डर जाते थे कि सांप आ गया, तो पिटारा उसको कहते हैं। तो पिटारा का मतलब है कोई एक बंद चीज जो खुले खुले तो सब लोग देखते रह जाए।
0: भाई राजेंद्र जी, यानी कि शांता जी का पिटारा हो गया कुरकुरु सरनामी भाषा में, और ऐसे ही कुछ चीज थे। अब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है भाई, प्रश्न ये हो जाता है कि क्या आप जानते हैं कि नाग और सर्प, क्योंकि पिटारा में नाग बैठ के और नाग को नचाते थे ना
2: जी,
0: क्या कहते हैं, और यानी कि कलाकार लोग जो अपने बांसुरी बजा बजा करके और नाग को और नचाते थे,
2: कृष्ण
0: जी बांसुरी बजाते थे, पर कलाकार लोग जो है कि नाक को और तनी पिटारा में से निकाल लेते थे कि उसे नचवाते थे ना।
2: हाँ,
1: बीन बजाकर मेरे ख्याल से।
2: हाँ, बीन बजाते हैं और फिर सांप नाचता।
1: एक फिल्म ऐसे है ना, फिल्म मंडोले में,
0: मंडोले में ना
1: जी,
0: गुफ्तगू तथा उसके बारे में पहले हम सबको ये संदेश दे दे कि नाग और सर्प में फर्क क्या है।
2: हाँ, जो नाग और सर्प में फर्क है, नाग और सर्प में क्या अंतर होता है, इसके बारे में चर्चा चलेगी। नाग और सर्प दोनों भगवान कश्यप की संतान है, अर्थात आदित्य, सूर्य, देवराज, इंद्र, गरुड़, उपेंद्र, भगवान वामन श्री हरि के ही भाई हैं। नागों की माता सुरसा देवी,
0: नागों के माता सुरसा देवी, यानी कि नाग के माता भी, उनका नाम भी
2: सुरसा देवी है। नागों की बहन माता मनसा देवी है और सर्पों की माता कद्रु देवी है। नाग और सर्प एक ही पिता की संतान होने के बावजूद अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग महत्व रखते हैं। नाग देवता माने जाते हैं और सर्प प्रेत योनि में माने जाते हैं। ये फर्क है कि नाग जो होता है वो देवता माना जाता है और जो सर्प होता है वो प्रेत योनि में माने जाते हैं।
0: ओ, तो ये बात तो हमें बिल्कुल पता नहीं था। यानी कि कहने के तात्पर्य ये है, नाग देवता और सर्प है तो वो प्रेत योनि में माना जाता है
2: जी।
0: और इसके बारे में और क्या हम सबके लिए आप बता सकते हैं राजेंद्र जी?
2: स्वप्न में नाग देखने का मतलब शुभ होता है, जबकि सर्प देखना पितृ या प्रेत देखना माना जाता है।
0: कोबरा देख लो तो जान लो शुभ है।
2: हाँ,
0: और कोई और सांप के बोमा देख लो
2: वो ठीक नहीं,
0: नाग का सपना देख लो तो यानी कि ठीक है।
2: ठीक है, नागों में सर्व प्रथम सर्वोपरि एवं ज्येष्ठ भगवान अनंत शेष नाग माने जाते हैं। ये भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इनके मस्तक पर संपूर्ण पृथ्वी स्थिर रहती है। इन्होंने अपने आप को भगवान नारायण की सेवा में समर्पित कर दिया।
0: राजेंद्र जी ठहरो ठहरो, क्योंकि इस पे तो मुझे एक वृतांत याद आ गया।
2: जरूर, आप अपना एक वृतांत सुनाइए।
0: क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते, तो उसके बाद में हम वृतांत की ओर बढ़ेंगे।
2: पहले गीत की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद वृतांत की ओर बढ़ते हैं।

0: जो सुंदर गीत जो चलाए भाई राजेंद्र जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो अभी हम सबको ऋषि अगस्त्य के बारे में सुनाने वाले हैं, और हम तो सिर्फ अभी खाली सिर्फ एक ही कहे थे कि भारत के सुनने वालों, दोस्तों सभी सुनने वालों, जो ये कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा जो दुनिया के 188 देशों में ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है इंटरनेट द्वारा, और ख़ास करके हॉलैंड में जो हमारे साथ ये कार्यक्रम सुनने वाले हैं पंडित जी, जो डायरेक्ट व्हाट्सएप किया कि आप लोगों ने नहीं कहे नीदरलैंड में सुनने वालों, तो दोस्तों ये है तो कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, और हम सभी नीदरलैंड के सुनने वालों के और जितने सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन एक बार फिर से कहते हूं। और ये मत भूलना कि अभी हमारे विषय जो है हम उसमें छलांग नहीं लगा पाए, क्योंकि अभी तो नाग देवता के बारे में कुछ हमारे राजेंद्र जी हम सबको सुना रहे हैं, और कुछ अभी संदेश बाकी है राजेंद्र जी कि हम सब छलांग लगा देते हैं?
1: नहीं, अभी थोड़ा सा संदेश बाकी है, तो आगे हम शुरू करते हैं। नागों में सर्वप्रथम सर्वोपरि एवं ज्येष्ठ भगवान अनंत शेष नाग माने जाते हैं। ये भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इनके मस्तक पर संपूर्ण पृथ्वी स्थिर रहती है। इन्होंने अपने आप को भगवान नारायण की सेवा में समर्पित कर दिया, इसलिए नागों के राजा इनके कनिष्ठ भाई नागराज वासुकी माना जाता है।
0: पर हम तो कुछ वृतांत सुनाने वाला था, और अगर आप हमें अवसर नहीं देंगे तो मैं सुना भी नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने कहे थे कि राजेंद्र जी की शेष नाग के सिर पे ये पृथ्वी डोल रहा।
1: हाँ, शेष नाग के सिर पे ये पृथ्वी पूरा टिका हुआ है।
0: तो ऐसा हुआ कि दो मित्र एक दूसरे को मिलने की इच्छा किया, वशिष्ठ मुनि जी और स्वामी विश्वामित्र जी। दोनों एक दूसरे का बड़ा प्रिय मित्र थे, और इच्छा किया एक दूसरे से मिलने के, और कहते हैं कि यह इच्छा शुद्ध होता है तो जरूर होता है, और कभी काल के उससे भी बड़ा बढ़िया हो जाता है
1: जी।
0: इच्छा किया और दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे से मिले तो वशिष्ठ मुनि महाराज ने अपने प्रिय स्वामी विश्वामित्र जी को मिल करके और इतना प्रसन्न हुआ, और स्वामी विश्वामित्र जी जो 1000 साल के तपस्या किया था वो भी इतना प्रसन्न हुआ अपने मित्र को मिलके। तो दोनों एक दूसरे को मिलके गले लगाते हैं, और गले लगाते लगाते सोचते हैं कि क्या मैं करूं, क्या दे सकता हूं इन्हें। तभी स्वामी विश्वामित्र जी ने 1000 साल के तपस्या किया था, उन्होंने अपना 1000 साल का तपस्या अपने वशिष्ठ मुनि महाराज अपने प्रिय मित्र को अर्पित कर दिए। अब वशिष्ठ मुनि महाराज सोच में पड़ गया कि मैं क्या देऊं, मैं तो आम जनता हूं, अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं किया है। तभी उनके ये ख्याल आया कि उन्होंने अपने जीवन में एक घड़ी का सत्संग किया था। एक घड़ी का सत्संग, एक घड़ी होता 24 मिनट का ना।
1: हाँ।
0: तो एक घड़ी का सत्संग उन्होंने किया था, और उन्होंने अपने, क्योंकि कुछ देना है तो कुछ लेना है, कुछ लेना है और देना, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो उन्होंने एक घड़ी का सत्संग अपने मित्र स्वामी विश्वामित्र जी को अर्पित किए, यानी कि गिफ्ट, यानी कदों में दिए, भेंट में दिए। दोनों देखने लगे कि एक ओर 1000 साल के तपस्या और दूसरा ओर एक घड़ी का सत्संग, दोनों इसमें ये प्रश्न डाले कि इसमें से बड़ा कौन है। तभी दोनों सोचे कि ये सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी है, चलते हैं उसके पास और उनसे ये संदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए, हमें इस बात को ज्ञान नहीं है कि एक घड़ी का सत्संग बड़ा है या 1000 साल का तपस्या बड़ा है। ब्रह्मा जी तो स्वभाव दोनों के जानते थे, सोच में पड़ गए और सोचे अभी इसको मैं छोटा बनाऊं और इसके मैं बड़ा बनाऊं तो कहीं हमें शाप ना दे दे। ब्रह्मा जी ऐसा और संदेश दिए कि देखो जाओ शेषनाग जी के पास, वही शेषनाग जिसके पृथ्वी धोल रहा सिर से।
1: हाँ। जी।
0: तो दोनों जाकर के शेषनाग जी को प्रणाम करते हुए और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि शेषनाग जी बताइए, हमें एक घड़ी का सत्संग बड़ा है या 1000 साल का तपस्या बड़ा है। अब शेषनाग भी चक्कर में पड़ गए, उन्होंने सोच में पड़ गए कि किसे और कौन कैसे हम बड़ा करूं। तो शेषनाग जी ने कहा कि मेरे सिर पे जो ये पृथ्वी डोल रहा है, हमें सोचने का अवसर दे वो, और ये जो पृथ्वी है जो डोल रहा है, इन्हें अपने सिर पे रख लो कुछ समय के लिए ताकि हम सोच सके। और पृथ्वी को स्वामी विश्वामित्र जी के जो 1000 साल के तपस्या किए थे उनके सिर पे रख दिया गया और पृथ्वी डोलते रहे, पर पृथ्वी का भार सह नहीं पाया और वो कहने लगे कि भाई वशिष्ठ मुनि जी, ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मदद करो। छन समय में और वो भार संभाल नहीं पाए और वो पृथ्वी को वशिष्ठ मुनि महाराज के सिर पे रख दिए। जैसे कि वशिष्ठ मुनि महाराज के सिर पे रखा गया, जो पृथ्वी डोल रहा था डोलना बंद हो गया। तो समझ गए होंगे आप कि सत्संग में वो शक्ति है, सत्संग वो गंगा है जो पापी से पापी भी ना हो पावन हो जाता है। जो सृष्टि जो डोल रहे थे वो एक घड़ी के सत्संग से बंद हो सकता है। तो शेषनाग जी इसे हंसते हुए कहे कि आप खुद ही फैसला करो, खुद ही सोच लो कि कौन बड़ा है। पर नाग देवता के जो अगर कुछ और संदेश है तो सुना दो, तो हम सब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में।
1: आपने जो जानकारी दिया है अभी बहुत ही अच्छी और दृढ़ है, मुझे लगता है कि सब लोगों को इसको बड़ा फायदा होगा और वो इसका लाभ उठाएंगे। आगे नागराज की बात चल रही थी, नागराज वासुकी भगवान शिव के आभूषण रूप में उनके साथ विराजमान रहते हैं। नवनाग इस प्रकार हैं, अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, कालिया, कंबल, कर्णोटक, पद्मनाभ, शंखपाल और धृतराष्ट्र। कर्णोटक भगवान शिव के गण माने जाते हैं। इन नवनागों के नाम का नित्य स्मरण करने से मनुष्य काल सर्प दोष से मुक्ति पा जाता है। काल सर्प दोष के कारण मनुष्य जीवन में कभी दुख नहीं पाता एवं मांगलिक कार्य में भी बाधा आती है। अतः नाग और सर्प को आप लोग एक ही श्रेणी में न रखें। इस प्रकार नाग और सर्प का जो है अलग अलग प्रकार से, और 9 प्रकार के नाग हैं जिनका भी नाम लिया गया है। बताइए संजय जी, अब आप आगे का क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
0: संत जी कुछ और कहने वाले हैं, क्योंकि काल सर्प दोष के बारे में भी कुछ कहना है संता जी?
2: नहीं, मैं पूछ रही हूँ काल सर्प दोष इसके क्या कहते हैं, किसको कहते हैं और क्या है ये?
0: वो तो एक बड़ा बड़का वृतांत हो जाएगा अगर जो हम लोग, क्योंकि आज का विषय हमारे है, तो क्यों ना एक बार उसके बारे में एक अपार्थ और वृतांत ले जाएंगे शांता जी, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम जो कि अभी हम सब छलांग नहीं लगा पाए हैं, ऋषि अगस्त्य। तो ऋषि अगस्त्य के ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी थोड़ा से कुछ सुना दो, तो हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों सुनने वालों, इन जानकारी को हमें जानना है और ये एक अच्छा संदेश है जो शायद हम सब कभी सुने भी नहीं थे। हम उसके बारे में कुछ ना कुछ संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम राजेंद्र जी, क्या है उसका संदेश?
2: मैं ये कहना चाहती थी कि अभी हमारे कॉलेज जी कहा कि सत्संग ना, कि एक घड़ी के सत्संग से पृथ्वी जब सिर पे धरे तो रुक गए। तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो इस वक्त हम कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, ये भी एक सत्संग है।
1: हाँ, जैसे कि अभी हमने नागों की बात करी तो उसके विषय में एक सुंदर सा नगमा पहले रखा जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक बताइए संजय जी, आपका जो विषय है उसके बारे में।
0: अब जोर बढ़ नहीं पाए और गीत का जो बोल है वो भी आप ढूंढ रहे हो, तो हम ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ा है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, यानी कि हम सबको हौसला रखना चाहिए और हमें
1: गीत की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम अगला
0: फिर आगे बातचीत होगा। दोस्तों हम सब सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ रहे हैं।

0: देवता है और इस सुंदर सा नगमा जो भाई राजेंद्र जी हम सबके लिए चलाए। तो शांता जी, ये जानकारी आपको पता था नाग देवता वाला कि नहीं?
1: मैं सच कहूँ तो जो हम हर सप्ताह की तरह यहाँ पे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में हम एक एक वाक्य जो लाती है ना, जो एक औंदर वैरव हम लाते हैं, ये बहुत ज़्यादा से हमारे खातिर नए हैं।
0: मैं देख रहा हूँ भाई शिव किशुन सिंह जी और फोन पे और कह रहे कि हम लोगों भी कार्यक्रम सुन रहे, और देख रहा हूँ व्हाट्सएप बरख पे आए हैं कि तिल बुरख से पंडित ब्रह्मदत्त शिव नंदन जो अपने पत्नी के साथ सुनीता जी ये कार्यक्रम को सुन रहे, तो पंडित जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और सभी सुनने वालों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो कोई व्हाट्सएप बता देते हैं हम सबके लिए या कोई संदेश पठा देते हैं तो हम सबके हौसला और बढ़ता है और हम सब ये मनचाहा कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में हम सबको भी अच्छा लगता है कुछ सुंदर सुंदर संदेश आपके लिए रखने के लिए। जैसे कि शांता जी अभी कहे कि नाग देवता का जो एक छोटा सा औंदरवैरप उसमें जोड़ दिया गया था, तो कुछ विशेष जानकारी हम सब लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित है। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आज ऋषि अगस्त्य के बारे में क्या आप सुनाने वाले हैं?
2: आज जो विषय है ऋषि अगस्त्य जी का, वो बहुत ही गंभीर विषय है, तो उसके बारे में आज चर्चा रहेगी। प्राचीन भारत के ऋषि अगस्त्य सप्त ऋषियों में एक थे, जिन्होंने भगवान मुरुगन से कलारी पायातन सीखकर दुनिया को इससे अवगत कराया। यानी कलारी पायतु एक टेक्निक थी ऋषि की, उन्होंने वो सीखकर पूरी दुनिया को इससे अवगत कराया, पूरी दुनिया को बताया इसके बारे में।
0: तो ये बात हो जाता कि हमारे ऋषि द्वारा, क्योंकि एक कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने इस बात को जानकारी पाए थे कि भारत हमें और जीरो दिए थे ना
2: जी,
0: तो उसके कारण आज लोग वैज्ञानिक लोग एकदम मार्स तलक पहुंच गए, यानी कि मंगल तलक। और ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये ऋषि अगस्त ने कुछ बातें हैं, क्या कह रहे थे आप?
2: कलारी पयातु,
0: हाँ, तो उसके आप थोड़ा निचोड़ दो सरनामी में हमारे, एकदम जैसे सरनामी आप बात करते हैं आजकल।
2: हाँ, तो जिन्होंने कलारी पयातु एक रहिला टेक्निक रहिला, उन्होंने भगवान मुरुगन से सीखिला, दुनिया को इससे अवगत कराया, और इनकी भक्ति भाव को देखते हुए जावा और सुमित्रा में इनकी पूजा भी होती है। सुमात्रा और जावा एक देश है और दो देश हैं, उनमें इनकी पूजा भी होती है
0: वहां पर अगस्त्य ऋषि का
2: जी। ये दक्षिणी चिकित्सा प्रणाली सिद्ध वैद्यम के जनक भी हैं। इन्होंने अगस्त्य संहिता भी लिखी थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जो हैरान करने वाला है और ये साबित करता है कि भारत में इसका ज्ञान मौजूद था।
0: तो ये बढ़िया बढ़िया संदेश आप सुना रहे हैं कि भारत, यानी टेक्निक जो, ये तो ये वृतांत तो ये 100 साल पुराना नहीं होगा ना?
2: नहीं, ये वृतांत बहुत पुराना है, ऋषि मुनि बहुत पुराना है, सतयुग
0: का,
2: त्रेता द्वापर कलयुग, ये युगों की बात है, बहुत पुराना विषय।
0: तो ये तो मैं थोड़ा अब
3: आप बेशब्द हो गए ना?
0: बेशब्द हो गई,
1: मैं भी बेशब्द हो गई,
0: क्योंकि इन बातों को सुन करके, अब देखो आज से 20 साल पहले
2: ये सब वैदिक काल के जमाने की बात है। वैदिक काल मतलब बहुत पुरानी बात है, वैदिक काल जब लोग सब वेदों को मानते थे, उपनिषदों को मानते थे।
0: और इस बात को सुन करके कि हमारे ऋषि अगस्त ने इनके द्वारा क्या और हुआ,
2: उससे पहले हम चाहते हैं कि एक ये देश है वीर जवानों का एक सुंदर सा नगमा रखा जाए, और इसके बाद उसका और भी प्रचुर मात्रा में इसका आनंद आएगा, तो सुनते हैं।

0: इस देश की यारों क्या कहना। तो विषय आज ऐसा ही है कि इस देश में ऐसे ऐसे, भारत देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि उनका क्या कहना है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। संस्थाप्य मृणमये पात्रे ताम्र पात्रम सुसंस्कृतम छादये छादि ग्रीवेना चंद्राभि कंठा पंसुभि दस्ता लोष्टो निधात्वा परदाश्चा दिदित्तत्ता संयोगा जयाते तेजो मित्रा वर्ण संजिताम। अगस्त्य संहिता से लिया गया है। अर्थात एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टी का कॉपर सीट डाले और सिखी ग्रीवा कॉपर सप्लेट डाले, फिर बीच में गोली कास्ट पांसू वल से डस्ट लगाएं, ऊपर पारा यानी मरकरी तथा दस्त लोस्ट जैक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मिस्त्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ऋषि अगस्त्य जी ने बहुत पहले ही इस बारे में ये सब चीज बता दी थी कि किस प्रकार से बिजली बन सकती है। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लॉटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है।
1: राजेंद्र जी, आप इतना ज्यादा तादाद में ये संदेश हम सबको सुना रहे हैं
0: जी,
1: पर इसे बात सुन सुन करके ऐसा लग रहा है कि ये हम मनुष्य काफी देर से ऋषि अगस्त्य को समझे।
0: हाँ, ऋषि अगस्त्य को कुछ लोग तो पहले ही समझ गए थे, लेकिन जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची वो अब पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से।
1: और ये बात हो जाता कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक जो हमारे ऋषि जी के
0: जी
1: ज्ञान से जो रख दिए थे, जो उस समय अभी आपने भी इस बात को भी वर्णन किए थे ना
0: जी,
1: कि उसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी जानना चाहता हूँ कि आपने कहे कि ऋषि अगस्त्य ने सारा समुद्र को सोख दिए थे।
0: हाँ, ऋषि अगस्त्य ने एक बार समुद्र में तीन आचमनी किया और पूरा समुद्र सूख गया,
1: सारा समुद्र।
0: और इसके बाद फिर जब सब लोगों ने प्रार्थना करी कि वहाँ पे बहुत सारे जलचर जीव हैं और इस प्रकार से होगा तो कैसे सब रहेंगे, तो फिर उन्होंने वो पानी नाक से निकाला, उसी दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया।
1: ओ, तो पानी जो खारा हुआ है ये ऋषि अगस्त के कारण, क्योंकि वो अंदर ले लिया था सब
0: जी,
1: और सब जब छोड़े तो नाक के द्वारा छोड़ने से पानी खारा हो गया
0: जी। तो इस प्रकार से जो पानी खारा हुआ वो नाक के द्वारा छोड़ने से हुआ।
1: तो ये संदेश तो हमें अभी इस बात को सुन के बड़ा ये सोच में हम पड़ गए हैं कि आज हम सब यानी कि हमारा तरक्की जरूर हुआ।
0: हाँ।
1: हम सब के पास अब मोबाइल फोन होते हैं, पर और हमारे तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि बड़ा तेजी से बढ़ रहे, पर ये सब तो कितने साल कितने वर्षों ये कि समय से अगस्त्य ऋषि ने खोज करके और रख दिए थे
0: जी।
1: और आज हमारे पास वैसे तो देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक लोग रोज निसंदेह और आगे बढ़ रहा है, अपना तकनीक को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कि कुछ साल पहले एक भारत से एक काम हुआ था यहाँ हॉलैंड में, और जो डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में टेयू डेल्फ्ट में, और वो उसके बारे में काम हुआ था जो टुक टुक पहले होते थे ना भारत में,
0: अब तो भी होते हैं भारत में टुक टुक,
1: पर अब वो बन गया सब
2: इलेक्ट्रिक।
0: हाँ,
1: वो यहाँ के सहयोग से बनाया गया है, उस कुछ 15 साल पहले के बात है
0: जी।
1: और अब देखो तो बस पोल्यूशन सब खत्म और कितना साफ सुथरा होने लगा है।
0: हाँ, धीरे धीरे पोल्यूशन में कमी आ रही भारत में, और अच्छा
1: ये बात हुआ कि पर अभी तक हमें जिस बात के जो हम इस बात को सोचते हैं कि जो आज से उतने पहले, उतने सालों, उतने समय पहले जब अगस्त्य ऋषि ने इस बात को हम सब के लिए खोज के रख दिए थे, तो अभी तक हमारे पास एक मोबाइल जो होता है तो वो 5 दिन से ज्यादा नहीं चलता है।
0: हाँ।
1: तो कुछ अब भी कम है। अभी कुछ कम है।
2: हाँ, तो इसका खोज करना पड़ेगा अभी तक, मतलब
1: जी हमारे टेक्नोलॉजी वाला है वो खोज कर रहे, खोज करते रहते हैं। देखो अब तो समस्या ये हो गया है कि राजेंद्र जी, इस पे जब देखा जाए ना, तो अब देखिए गाड़ी आजकल बन गया है बैटरी से चल रहा।
0: हाँ।
1: यही टेक्नोलॉजी
0: है जो कि ऋषि जी ने बहुत पहले वो कर दी थी, लेकिन अब
1: प्रयोग अब हो रहा है। अभी तो हमारे, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है, अप्रैल महीना में पहला बार वो लोग इलेक्ट्रिक प्लेन जो 68 किलोमीटर यहाँ हालत में उड़ा दिए, 68 किलोमीटर का फ्लाइट बैटरी द्वारा उड़ा दिए, पर वो लोग भी और भी खोज कर रहा है, और भी खोज कर रहा है कि कैसे और आगे कर पाएंगे। ये तो अभी वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि कभी ऐसा होगा कि सिर्फ बैटरी द्वारा और बड़े बड़े जहाजों उड़ पाएंगे, ये मुमकिन वो कहते हैं कि यह नामुमकिन है।
0: नहीं, वो जब पहले जहाज बना, जब जहाज नहीं था तो उस समय ये नामुमकिन था कि कुछ चीज उड़ भी सकती है क्या। लेकिन जब जहाज बन गया तो मुमकिन हो गया, तो आज लोगों को वो लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात लगती है, और जब वो हो जाती है तो छोटी लगती है। धीरे धीरे रिसर्च इसी प्रकार होता रहता है।
2: हाँ, पर राजेंद्र जी ऐसे भी है ना, रामायण के समय पे भी ऐसा हुआ ना कि राम विमान में बैठ के आए थे अयोध्या में।
0: हाँ, तो उसी जो विमान है, उसी की जो बात चली, उसी के आधार पर प्लेन बना।
2: अच्छा,
0: आपको एक जानकारी और मिल जाएगी इसमें कि जो प्लेन बना है, वो जो सबसे पहले जिन्होंने प्लेन बनाया, तो जब उन्होंने सुना कि लंका से राम पूरी सेना लेके एक विमान में अयोध्या पहुंचे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने रिसर्च किया इस बारे में, तो फिर उसी के आधार पर प्लेन बना।
1: कितने साल पहले के बात है। और दोस्तों सुनने वालों, यहाँ पर हम सब जो संदेश लेकर आए हैं कि हमारे, अभी हम सोच रहे कि हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना है, पर वैज्ञानिक लोगों को अब ढेर सारे चीज खोजना है जिसे हमारे संत मुनि तथा हमारे ऋषि अगस्त ने किसी और काल में इस बात को बारे में वर्णन कर चुके हैं, और अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सामने आ रहा है।
0: अन्नने जल भंगोस्ति प्राणो दानेषु वायेषु एवं शांतानां कुभाना संयोग कार्यकृतः समामृता। अगस्त्य संहिता से ये 2 श्लोक हैं। महर्षि अगस्त्य कहते हैं 100 कुंभों अर्थात उपरोक्त प्राक प्रकार से बने तथा श्रृंखला से जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तथा उदान वायु यानी हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कृत्रिम स्वर्ण रज लेपत सत्कृति रुच्यते यवछार मयोधानु सुसक्त जलसंधितो आच्छादयति तस्मात् प्राम स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्णलिप्तं तत्मात्रं सातकुम्भिति स्मृतम्। ये भी अगस्त्य संहिता से लिया गया है। अर्थात कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुसक्त जल यानी तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवछार यानी सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को सात कुंभ अर्थात स्वर्ण कहा जाता है। इसका उल्लेख शुक्र नीति में भी है। तो विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वाहन संवेद वाहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर

0: जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलता है, और जो कभी नहीं नहाते वो परफ्यूम बदलता है।
1: बड़ा सुंदर संदेश। राजेंद्र जी, आप कुछ कहने वाले हो इस पे, क्योंकि परफ्यूम कहते हैं इत्र का ना?
2: हाँ, हम तो यही कहेंगे कि परफ्यूम बदलने की जरूरत नहीं है, रोज नहाना चाहिए, और जब नहाएंगे तो परफ्यूम की जरूरत नहीं होगी।
1: हम एक गीत के ओर बढ़ रहे हैं राजेंद्र जी।
2: जी।
3: नफरत के

0: संदेश यानी इस गीत में कितना है ना राजेंद्र जी, ये जो आपने संदेश सुनाई, हम सब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे। पंडित जी आप इस साइड टेलीफोन पे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव लाने को। हाँ पंडित जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव सेंडिंग में लाने को, पर अभी
1: हाँ आज का जो हमारा विषय है, जय भगवान रक्षा करे। आज का जो हमारा विषय है ऋषि अगस्त्य जी का, हम चाहेंगे कि आप इसमें कुछ और गूढ़ जानकारी देंगे जिससे कि सब लोगों को इसका फायदा हो। जी
2: ये तो आज जा करके अगस्त मुनि की कथा मैंने सुना
1: जी,
2: नहीं आप लोग स्टूडियो में तो बड़े विद्वान लोग हैं तो हम क्या कहें। सबसे पहले मैं अपने शांता जी से बात बता कर कुछ करना चाहता हूँ।
1: हाँ बताइए, शांता जी सुन रही हैं।
2: सबसे पहले कि बड़ी खुशी की बात है कि शांता का बकरी ने अंडा दे दिया, तो शांता जी का बकरी कई अंडा दिया है?
1: हाँ वो एक पुरानी कोई बात थी जो कोई बच्चे के बारे में उन्होंने बोला था कि उसका नाम मुर्गी का नाम बकरी रखा था, इस प्रकार से था।
2: अच्छा।
1: हाँ तो आपने वो सुना होगा पूरा।
2: और अभी हमारे भैया संजय जी ने
1: जी
2: कहा कि ये इलेक्ट्रिक का गाड़ी चल पड़ा है।
1: हाँ
2: लेकिन मैंने आरोप पढ़ा है कि गाड़ी पानी वाला भी बन चुका है और दलव कोशिश कर रहा है जो घाम से सूर्य से चलेगा।
1: हाँ सौर ऊर्जा का चलेगा लेकिन उसमें थोड़ा भी पूरा मार्केट में आने में टाइम लगेगा।
2: भैया राजेंद्र सिंह जी और संजय और शांता जी, ये तो मजाक था ना, जानते हो कि ये पंडित तने मजाक उजाक करते हैं। कृष्ण भगवान की पोता है, कारण कृष्ण भगवान के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न के बेटा का नाम अनिरुद्ध था
1: जी।
2: तो अनिरुद्ध मजाक भी करता है लेकिन सीरियस बात जो है कि ये जो हमारे अगस्त मुनि हैं, अभी आप भी कहे हैं कि अगस्त मुनि समुद्र का पानी पीकर आचमन करके समाप्त कर दिया।
1: हाँ।
2: लेकिन आप बताए नहीं कौन समुद्र कहाँ का समुद्र, तो ये कार्य शुरू होता है, ये जा करके शुरू होता है जब जा करके राजा दिलप सब दिलप राजा कई तप करते करते थक गए तो भागीरथ जी ने अब जाकर को तप किया। अब भागीरथ जी को विष्णु भगवान जी ने अंगूठा से निकाल कर गंगा जल दे दिया
1: जी।
2: ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में नहीं रोक पाया, शिव जी ने कैलाश पे नहीं रोक पाया, और उधर ब्रह्मा जी ने सोचे कि मैं कोई भक्तों पठाऊं दुनिया में जो भक्त का प्रचार हो सके
1: जी।
2: तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य पुत्र उत्पत्ति किया, सात पुत्र ना, जैसे अगस्त मुनि है, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि और मुनि कितने हैं, तो ये सात पुत्रों को उत्पन्न किया। तो सात पुत्र ने आ करके और ऋषि केश में स्थान लिए।
1: हाँ ऋषि केश, इसलिए वहां का नाम ऋषि केश है।
2: हाँ ऋषि केश
1: जी।
2: तो ऋषि केश में बड़ा नदी बह रहा था, तो अगस्त मुनि को ये बात मालूम था कि भागीरथ ने गंगा को प्राप्ति कर लिया।
1: हाँ,
2: तो सोचे गंगा जी कहां से पार होंगे, तो अगस्त जी ने ये बात को, ये ब्रह्मा जी का मनुष्य पुत्र है तो ये बात सोच करके गंगा वहां नदी जो बह रहा था तो गदी में गया अश्विनी करने। तो पहला अश्विनी जो किया तो गंगा पानी बाकी जो रह गया तो जम गया।
1: हाँ,
2: हाँ। बर्फ हो गया। तो दूसरा अश्विनी जो किया गंगा वो बर्फ को लेकर के, तो बर्फ गल करके थोड़ी पानी रह गई समुद्र में। और तीसरा अश्विनी जब अगस्त मुनि ने किया तो सारा पानी सूख गया। और अगस्त इसलिए किया कि जानता है कि अभी गंगा भागीरथ जी गंगा लेके आएंगे। तो अगस्त मुनि अपने सातों भाइयों को लेकर के वहीं पर तप करने गया। कहें यही पर हम लोग बैठ के पूजा पाठ करेंगे
1: जी।
2: तो गंगा जी को ना ब्रह्मा रोक पाया, ना विष्णु रोक पाया, ना शिव जी रोक पाया, फिर आ गए
1: जी।
2: तो ऋषि केश के मोड़ पर जब आया तो हिमालय पहाड़ बन के बढ़ गई।
1: हाँ।
2: तो यहाँ गंगा नहीं निकल पाएगी, लेकिन कहा पहाड़ में उस पार से घुस के गंगा इस पार निकल गई।
1: गौमुख में
2: जब से निकली तब से आज दिन तक
1: जी
2: गंगा जी वही बहता है।
1: हाँ
2: एक तरफ खाली दूसरा तरफ नहीं, कभी घटता बढ़ता नहीं है कि चढ़े पानी फिर उतरे।
1: हाँ बरसात में थोड़ा चढ़ जाता है पानी।
2: हाँ कहा
1: बरसात में जो गंगा का पानी तो उतना ही रहता है, लेकिन जब नीचे ऋषिकेश और इधर हरिद्वार में आता है उस समय थोड़ा पानी यहाँ बढ़ जाता है
2: ना। वो इसलिए बढ़ जाता है जब झूरा के समय आता है
1: जी
2: मई से सितंबर तक।
1: हाँ
2: तो कैलाश का पहाड़ का बर्फ जो है वो गलता है।
1: हाँ
2: तो वो गंगा नदी में आ जाता है
1: जी।
2: तो वहां पर जा करके अगस्त मुनि ने ये बात का विचार किया कि सातों भाइयों से कि हे भाइयों यही हम लोग तप करें। बैठकर ऋषिकेश में तप करने लगा जो उस समय जितना पहाड़ों का था सबको जा करके अगस्त ऋषि ने अहंदुलवाशा ये जा करके उनको वहां पर सब पहाड़ों को छोटा कर दिया
1: जी।
2: अगस्त मुनि फिर आगे चल के त्रेता युग की कथा है कि श्री रामचंद्र भगवान जब जाकर रावण पर आक्रमण करने के तैयार हुआ तो अगस्त मुनि ने रामचंद्र जी को मदद किए कि जो रावण पर विजय को प्राप्त कर सके।
1: हाँ हाँ।
2: और फिर महाभारत में और अनेकों इतिहास में अगस्त जी एक जहीन जो सात भाइयों में से कि जो पलंकाइन यानी जो जा करके नहुषा को जाकर को मत कम किया, कारण नहुषा जो था तो इंद्र का पत्नी को जाकर को हरने को कोशिश किया, कारण इंद्र का पत्नी का नाम सच्ची देवी थी। तो उनको जाकर को बचाने के लिए अगस्त मुनि ने बहुत से मदद किए
1: जी।
2: और अगस्त मुनि का धर्म था हिंदू, हिंदू माने हिन माने हिंसा, दू माने दूर, तो हिंसा से दूर रहने वाला वो हिंदू कहलाता है। अगस्त मुनि के पत्नी था जिसका नाम लुपार मुद्रा था
1: जी,
2: और लुपा मुद्रा जी थे और उनके साथ एक बेटा पैदा हुआ था अगस्त मुनि को जिसका नाम दर्भाशिव, और ये जा करके बहुत से इतिहासों में ये कथा आता है
1: जी।
2: जैसे जा करके तामिल में अगस्त मुनि को अगस्त्यम कहते हैं
1: जी,
2: इंडोनेशिया में अगस्त्या परवा कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो तामिल के सिद्धधार जा करके श्री विष्णु जी ने और जा करके और सहयोग दिया कि अगस्त मुनि जितना चीज दुनिया में किए हैं कहूंगा तो आप लोग का समय भी ज्यादा निकल जाएगा।
1: हाँ,
2: तो इससे ज्यादा न कहते हुए मैं छोरी में समाप्त करता हूँ
1: जी।
2: अगस्त मुनि भगवान विष्णु का ये ब्रह्मा जी का मनुष्य पुत्र है जो अपने मन से सोचा था ऐसा ऐसा बनाऊ, तो अगस्त मुनि के बनाया कि जो तेज में जैसे संजय ने कहा है कि बिजली जल जाता है स्ट्रोम से, एक जगह फैब्रिक है सारा हॉलैंड भर में स्ट्रोम बिजली देता है, तो ऐसा चीज बनाया जैसे अभी बताए इलेक्ट्रिक का गाड़ी बन गया
1: जी,
2: पानी से गाड़ी चलने लगा, ये जा करके अभी बिजली से सूर्य चंद्र के किरणों से चलने लगेगा, तो ऐसे ऐसे। और ये कहूं भैया राजेंद्र सिंह जी,
1: जी
2: कि अगर मैं कहूं तो ये कथा समाप्त नहीं होगा रात भर में।
1: हाँ तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा शॉर्ट में करें।
2: हाँ तो इसी से मैं शॉर्ट में कह करके
1: जी
2: यही कहूंगा कि सबको अच्छा है और ठीक है, और जितने लोग हैं कोई को जांच पड़ताल बाकी जानना चाहिए और आप लोग से कॉन्टेक्ट करें तो इससे संबंध होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी और अगस्त्य मुनि के बारे में और गंगा के बारे में और सप्त ऋषि के बारे में, हम हमारे सारे श्रोताओं को इसको बड़ा लाभ मिला होगा, लाभ मिलेगा आपकी जानकारी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ना मेरा धन्यवाद नहीं है रजत जी, धन्यवाद तो आपका है श्वेता को और शांता देवी को कि जिन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम प्रोग्राम और हिंदुस्तानी रेडियो का मालिक जो है उनको धन्यवाद है कि जो ऐसे रेडियो बना करके ऐसा संदेश सारा दुनिया भर पसार रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे पंडित जी ने हम सबको कुछ ना कुछ और काफी संदेश, ना कुछ काफी संदेश हो गया ना राजेंद्र जी, क्योंकि अभी तो कुछ बाकी था आपको भी सुनाने को राजेंद्र जी, और शांता जी का बाकी है जो वो नई दलांश में लिख करके आए हैं।
1: उससे पहले हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं। जब

0: तो संजय जी बताइए, आपकी इतनी नदियां प्यारी है जहां माता कह के बुलाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: क्या कहूँ राजेंद्र जी, इस गीत को सुन करके और मन में बड़ा, आपने खुद ही देखा कि
0: जी,
1: तो हम सभी सुनने वालों को भी यही चाहता हूँ कहने को कि आप भी इस गीत को सुन करके और बड़ा प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास संता जी कुछ नई दलांस में भी उसके बारे में बताएंगे, क्यों हमारा जो ये ज्ञान जो हम सबको आज मिले है ऋषि अगस्त्य के बारे में। राजेंद्र जी, शांता जी की ओर बढ़ने से पहले कुछ संदेश और है जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं ऋषि अगस्त्य जी के?
0: जी, थोड़ा सा संदेश और रह गया और हम चाहेंगे कि उसको सब लोग सुने। नवभि स्थब्नुभि सूत्रम सूत्रेस्तु नवभि गुणा गुणेस्तु नवभि पाशो रश्मि रस्ते नवभेत नवाष्टम सप्तसे संख्ये रश्मि भी रज्जवा स्मृतः। नौ तारों का सूत्र बनता है, नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पास, नौ पासों का एक रश्मि और नौ आठ सात या छह रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है।
1: तो अब इसे थोड़ा से हम लोग के अपन हिंदुस्तानी हम बोलना।
0: हाँ, इसके मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, जो बिजली की तार की बात करी थी, उसके बारे में बात है। और आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों का आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है।
1: यानी कि जो हम लोग जो जानीला लुख बलोन ना शांता जी,
2: जी
1: लुख बलोन, तो ये पहले का बात है।
0: जी, वायुबंधक वस्त्रेणा सुबद्धोत नमस्तके उद्यानस्य लघुत्वेना विभत्यार्कास्यानकम्। अर्थात उदान वायु हाइड्रोजन का वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विदायु में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ाया जा सकता है। तो यानी कि फूंक जो हम गुब्बारे में भरते हैं वो हाइड्रोजन है, उसको किसी चीज में बांध दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो उड़ती है, ऊपर आकाश में उड़ती है। तो इसलिए गुब्बारा ऊपर उड़ता है। ये भी अगस्त्य ऋषि जी ने इसका बनाया, निर्माण किया था,
1: बताया
0: था। हाँ, बताया था।
1: हाँ, तो ये हम सब हीलियम कहते हैं ना, हीलियम खास मेरे ख्याल से, तो जिसे आप लुख बलोन आदि पर।
0: हाँ, लेकिन जो गुब्बारा बना वो तो बाद में बना, लेकिन उस समय पहले वायु पूर्णम वस्त्रम,
1: एक वस्त्र से बनाया जाता,
0: वस्त्र से बनाया जाता था, उसको बोलते थे वायु पूर्णम वस्त्र, जिससे जिस वस्त्र से हवा भी बाहर नहीं आती आ सकती थी, ऐसा वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती है। और उस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। श्री कद्रुम कद्मा वाभ्रम भयात्सौ जेल स्त्री त्रिफले दोषे तस्तेजम स्तोतम स्तता सम्यगम सक्रा सुक्त चूर्णम मिश्रितम वारिणाम सुरसम कुंटनम कुत्वा वंशासी स्त्री सुधी। अगस्त संहिता में लिखा है, अर्थात रेशमी वस्त्र पर अंजीर कटहल आम अक्ष कदम मीरा बोलेन वृक्ष के तीन प्रकार और दाले इनके रस या सत्व के लेप किया जाते थे। तत्पश्चात सागर तट पर मिलाने वाले शंख आदि और शर्करा को घोल यानी द्रव सीरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर इसमें उदान वायु भरकर उड़ाया जा सकता है। उसमें बहुत सारी चीजें, इस प्रकार की चीजें लगती थी तब वो वस्त्र बनता था। फिर उसमें सुखाया जाता था, फिर उसमें जो उड़ने वाली वायु नाइट्रोजन वो भरी जाती थी और फिर उसको उड़ाया जा सकता था। लेकिन आजकल तो बहुत ही सरल रूप में गुब्बारा बन जाता है, गुब्बारा में हवा भरो और वो उड़ने लग जाता है।
1: आप गुब्बारा कहते हैं पर हम लोग जाने के गुब्बारा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
2: लुख बलोन
1: ना।
0: हाँ, बैलून इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा बोलते हैं।
1: गुब्बारा
0: गुब्बारा यानी कि उसमें हवा भरी और आकाश में उड़ने लग जाए।
2: निखरो तो बलोन है।
1: हाँ, हाँ,
2: अभी
1: हाँ।
2: अभी तो शुरू होएगा सोमर, तो
1: हाँ,
2: आप
1: तो
2: देखोगे कि बास्केट नीचे लगेगा, ऊपर बलून रहेगा।
1: राजेंद्र जी, ये यानी कि ये टेक्निक जो उन्होंने हम सबको आज से कितने कितने कितने साल पहले के, और जो अपने अगस्त्य
0: अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य संगीता,
1: अगस्त्य संगीता में वर्णन कर चुके थे। तो आज तक हमारे और वैज्ञानिक लोग इस समय तक भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर अभी पहुंचे नहीं। शांता जी, जो हम सबके कुछ और संदेश सुनाने वाले हैं।
2: हाँ जी, तो हम थोड़ा से आपको नेदरलैंड्स में सुनाएंगे इसके बारे में, जो कि हमारे राजेंद्र जी ने हिंदी और संस्कृत में जो सुनाई आपको, तो हम कोशिश करेंगे इसको छोटा रूप में आपको भी सुनाएंगे। अगस्त्य मुनि इज द सोन फान वरुष उर्वशी एंड वरुण। अगस्त्य मुनि इज एन फान द बलांगरेक्स्ट मुनि इन एथ हिंदू धर्म। अगस्त्य मुनि सेन फ्रॉव हेट लोपो मुद्रा। In Ramayan Mahabharat kan men terugvinden, dus lezen over Agastya Muni. Uit de zeven rishis is hij, de Agastya Rishi, een van hun. Ja, het is een van hun en wordt gezegd dat hij meer dan 5000 jaar heeft geleefd. De Sapta Brahma erkennen de namen van de zeven rishis, oftewel Sapta Rishi genoemd. Dat zijn Agastya, Atri, भरद्वाज, गौतम महर्षि, जमकादनि, विश्वामित्र और एन वशिष्ठ जी। अगस्त्य जी द वैस फान हेट ऑफ द इंडिया वॉज एन फान द वैसन कलारी पायातु फान लॉर्ड मुरुगन लेर द कैनन एन आन द वेरल्ड बकेंट माकते। Gezien hun toewijding worden ze ook op Java en Sumatra vereerd. Dit zuidelijke medische systeem is ook de vader van Siddha Vaidyam. De Agastya Samhita is een boek waarover wij nu een beetje gaan hebben. Agastya Samhita. Verrassend genoeg worden in dit boek bronnen die verband houden met energieopwekking. Dit verrassend en bewijs dat zijn kennis in India bestond. Ja, luisteraar, u hoort het, dit bestond al. Maharishi Agastya was één Vedische wijze die elektriciteit had uitgevonden. Agastya Samhita, het boek, geeft ook details over het gebruik van elektriciteit voor galvaniseren. Agastya Muni bedacht de methode om koper of goud of zilver op batterijen te polijsten, waardoor dat Agastya ook bekend staat als de Kumbhodbhava, dat betekent batterijbeen. Hot balloons flying in the sky. You know, de luchtballonnen. Hot balloons flying in the sky. Aangezien hiervan heeft Agastya Muni ook de techniek genoemd van het vliegen met ballonnen in de lucht en het besturen van vliegtuigen. Lucht- en ruimtevaartkleding. Dit wil zeggen, als waterstof wordt gestopt in luchtbeperkte kleding, wordt gebruikt in vliegtuigelektronica. Dat wil zeggen, als de waterstof stevig in het doek is gebonden, kan deze de lucht in worden geblazen. Vayupuran-kleding. In de oudheid werd zo'n kledingstuk gemaakt waarin lucht kon worden gevuld. De volgende methode om dat kledingstuk te maken is in het boek Agastya Samhita. Je kunt het terugvinden in Agastya Samhita, in dat boek. Agastya Rishi, hij hielp Ram. Ram is avatar van Vishnu Bhagwan. Hij hielp Ram in zijn strijd tegen de demonenkoning Ravan. De koning van Lanka werd gedood door de pijl van Agastya Muni, afgeschoten door Ram. Met andere pijlen groeiden de 10 koppen van Ravan meteen weer terug. De speciale pijl was gemaakt van zonlicht en vuur en is even zwaar als de bergen Meru en Mandrachal. Ja, het is even zwaar als die twee. U hoort het, lieve luisteraars, wat onze Agastya Muni allemaal heeft uitgevonden. We moeten wel trots zijn. Het astronautenpakken, luchtballonnen, batterijen, vliegtuigen. Wat met waterstof te maken heeft, kunt u dat even... Het is heel geweldig.
1: आपने नीदरलैंड्स में भी जैसे कि राजेंद्र जी भारत देश से और हिंदी में ये वृतांत को सुना है, सारा वृतांत जो अगस्त्य ऋषि के। दोस्तों सुनने वालों, ये फाहन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे अगस्त्य ऋषि जो आज तक शायद हम नहीं जानते रहे होंगे कि उनके वृतांत उनके और जो लिखे हुए कितने और युगों पहले से और आज अब कुछ कुछ और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने लेते हैं। हम एक देश में रहते हैं हॉलैंड में और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक लोग भी लगातार खोज में है और ये खोज कर रहे कि अब कम से कम जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आदि है तो उसमें वहाँ पर और बैटरी द्वारा या फ्लिक्ट बनाया जाए और उसे कम से कम 500 किलोमीटर तक उसे उड़ा सके और आगे के चलकर के लोग खोज में है कि धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक भी पहुँच सके कि हम 1000 किलोमीटर तक बैटरी द्वारा 4 से 9 जने तलक यानी कि 4 से 9 पैसेंजर तलक और ऐसा प्लेन बना सके।

0: अब हमारा समय पूर्ण होने की तरफ आ गया है और अब हम विदा लेंगे आपसे और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी बार को। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले और ज्योति का प्रकाश पर्व कार्यक्रम को सुनने वालों के लिए मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन और प्यार।
1: हाँ जी प्यार सुनने वालों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं संपूर्ण सागर का एक बूंद हूँ, मैं तेरे पलकों का बस एक बूंद हूँ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के प्यारे और सारे सुनने वालों को, जैसे आप सुन रहे हैं हमारे राजेंद्र जी से, तो हम दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए, प्रोग्राम पसंद करने के लिए। आज के लिए आपसे हम जुदा हो रही हूँ, फिर से मिलने के लिए तो स्वीकार कीजिए सभी का शांता जी के राम राम प्रणाम यहाँ से।

देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धुन को सुनकर हमें ये बात को पता चल गया है कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ गए हैं। आज का विषय जो इतना मुश्किल विषय था, हमारे भाई राजेंद्र जी जो कितने सुंदर स्वरूप से और तैयार करके और हम सबको सुनाए, शांता जी जो कितने खोज किए इसके बारे में और सुंदर सुंदर गीतों को लेकर के हमारे साथ और ये कार्यक्रम में सहयोग दिए, पंडित जी जो अपने ओर से पूरा वृतांत पूरा कथा सुनाए, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए कि मैं हूं आपका सेवक संजय, आशा यही रखता हूं कि आप ये कार्यक्रम सुनते रहना और सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। नमस्कार।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

बहुत बेहतर रहेगा। और कुछ रिश्ते केवल सीख देने के आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और साथ निभाने नहीं, और जो बार बार बार बार तुम्हें चोट दें उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है मित्रों, साथ रहने से बेहतर है दोस्तों कि उसे मुक्त कर देना। और कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं, और इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ मित्रों, खुद को आत्मा इतना निर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे तुम्हारी गति ना रुके, तुम्हारी गति ना रुके मित्रों। इस तरह से अपने को निर्भर बनाओ।

0: मित्रों, कहे जाते हैं कि जीवन में सफलता केवल ध्यान करना हम क्या बदला रहे हैं कि जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है, केवल इच्छाएं रखने यानी इच्छा करने से, इच्छाएं रखने से कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है मित्रों। और जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है मित्रों, वही इतिहास रचता है। और माता पिता का संघर्ष, भाई बहनों ध्यान करना हम आपसे क्या बतला रहे हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बतला रहे हैं कि आप इसे याद करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आपका बाकी जीवन सफल हो पाएंगे, अन्यथा पता नहीं मित्रों। तो माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग, दोस्तों हम उनकी त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां, जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती है। मतलब खेन बतीकने अब जीवन में नहीं रहते, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाए मित्रों। ध्यान करते रहना,
1: जब हमारे पास बुढ़ापा आने लगता है तो इस भजन के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होने लगता है। जब ये सब आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि बुढ़ापा

0: मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द ध्यान करना, हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जब आप सोच रहे हो कि मैं बेकार हूँ, शक्तिहीन हूँ, एक मैं नीच, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। अभी तक तुम में और शक्ति है, और जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे, जो सीख तुम मेहनत से लोगे मित्रों, वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी। आपके ज्ञान हमेशा चलेगी, ज्ञान कोई छीन नहीं पाएगा आपके मित्रों। और कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ना सीखो, कुछ चीज़ को ना जिंदगी भर लेकर चलते रहो, चिंता करते रहो, बीमार हो जाओगे। छोड़ना सीखो है? क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता है, हर रिश्ता अमर नहीं होता है। कुछ बस अध्याय मित्रों, कुछ बस अध्याय होता है, थोड़े दिन के लिए जीवन में होते हैं, छुट्टा छुट्टी वगैरह वगैरह ये सब पता नहीं है, मगर कभी कर्म के अनुसार होता है ना। तो और कुछ केवल एक सबक है, जो कुछ मिले आपके जीवन में मेहनत से, या किसी ने आपको कुछ बुराई कर दिया, उससे जो सीख मिले हैं वो एक सबक है, वो एक लेस है मित्रों। डर उसे नहीं, डर नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, ताकि ताकि करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, उन लोगों से डरना चाहिए जो तुम्हारे लिए एगो फालसेती करे है, वैसे लोग से डरना चाहिए मित्रों। और तुलना करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, मतलब ओके ऐसे है तो हम के हो चाहिए, ओके मर्सिडीज भैंस हैं तो हम के मर्सिडीज भैंस चाहिए, ओके बीएमडब्ल्यू, ये सब बतिया छोड़, मेहनत करते रहो और जो मिले जीवन में उससे सुखी रहो, उसी में संतोष करना। तो तुलना करना छोड़ दो मित्रों, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो भाई बहनों, उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उसे तोड़ दो है? तब आप उड़ना सीखोगे, तब आप फ्रेय है पाओगे मित्रों।
1: पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना।

मित्रों, जो बात हम आपसे बतला रहे हैं और बतलाते हैं, इसे वैसा ही हवा में उड़ा देना नहीं है, जीवन में उतारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही, ध्यान करना इस पे हम क्या बोल रहे हैं। अगर माई बाप नहीं है तो फोटो है ना, खड़ा होके उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो भी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मित्रों जीवन की असली पूंजी है, जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में, ध्यान करना, यमुनिदें के यम वफ आउदर सैन आउद सैनिक स्मरणी, उनका आशीर्वाद पावर उतने ही हैं। तो माँ के चरणों में वही शक्ति है, वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है मित्रों, जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। विश्वास करो तो गंगा मैया है और ना विश्वास करो तो गोत्रों के पानी है मित्रों। खुश रहना, ध्यान करो, खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कौशल है, यह कला उससे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी मित्रों, कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं है। तो जो कोई आपके बात ना सुने, समझाओ बतलाओ ना सुने, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, अपन कर्म जाने, वो देखे का करे सके है मित्रों। इसीलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारे मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। जहां तुम चुप रहो वहां भर लोग समझ जाए कि करे आगे ना बतियाई, तो कुछ ना बोलते, आंतु और ना ही देवत है मित्रों। तो दोस्तों, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और उसे मुस्कुरा कर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है मित्रों। और ये ना सोचना कि हम डरपोक है या दूसर कोई सोचे कि तू डरपोक है, नहीं, सो हाथ है इतनी बस्त में से। और जो हम बतला रहे हैं ना, ध्यान करके सुनते रहना, ध्यान करके सुनते रहना।

मित्रों, जो अंदर टूट कर भी, ध्यान करिए, जो अंदर टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा है। हाँ, वही सबसे मजबूत योद्धा है, इंसान है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मा बल के आगे झुक जाए, झुक जाए मित्रों, क्योंकि आप में वो शक्ति है। और जब मनुष्य अपने आप की पहचानने की भूल कर बैठता है भाई बहनों, तब वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है, हट जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, जैसे आपके साथ होवत है। हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते आपके साथ, तो आप सही रास्ता पे हो, चलते रहना मित्रों। क्योंकि, ध्यान करिए, क्योंकि वो स्वयं के आत्मा बल को भूल कर दूसरों की सोच धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को खो बैठता है। और जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, तुम्हारे अंदर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों, आपके मन ही सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। शत्रु भी, तो दुश्मन बाहर ना खोजो, दुश्मन तुम्हारी कर्म से है, जैसा कर्म करियो वैसा ही मिले। प्रेम प्यार से रहिए तो प्रेम और प्यार मिलेंगे, और बिगी मांग खेलियो तो तुम्हारे सामने और बिगी मांग आ जाइए, तो टकराव हो ही, सुखी नहीं हो पाओगे मित्रों, सुखी नहीं हो पाओगे। इन सब बातों पे ध्यान रखते रहना मित्रों, हम सुमर बात नहीं बोलत हैं।

मित्रों, मैंने आपको भी बतलाया था कि मन ही आपका जो शत्रु है वो ही भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी आपके मन ही है, मगर वो आपके हाथ में है। और यदि उसे मित्रों, यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए मन को, तो यही मन तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। अनहैप्पी मन तीख व्यस्त में अनहैप्पी अन प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो, अपने खोपड़िया को ठीक करो, पहले अपने चित्त को स्थिर करो। मित्रों, दूसरों के कर्म और विचार क्या है, ध्यान करना, दूसरों के कर्म और विचार क्या है, इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका अपरिणाम तय करेगा, उनका अपरिणाम तय करेगा मित्रों। लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। तुम खुद अपने भविष्य का रचयिता हो और ना कोई दूसर कोई। मित्रों, और यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से इस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास करो हम क्या बोल रहे हैं मित्रों, ये सब बेकार की बात नहीं है, सोचनीय बात है।

मित्रों, आप देखिए कि कितनी उम्र के हैं आप, और फिर भी आप सोच रहे हैं सुधरने की बात कि हम अपने जीवन में और बेहतर करेंगे। और बेहतर क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सुधार आ सकती है मित्रों। तो इसीलिए आपको हम इस रूप में इस तरीका से ज्ञान प्रदान करते हैं। इच्छा हो तो ले लेना, अगर ना इच्छा हो तो चलते रहना। जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उससे चलते रहो, देखो कहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग तो चले गए, कहाँ गए पता ना है, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? तो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोग, ये आप तय करते हैं। हम यही कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उन लोगों से मिलवाते रहना जो आपको मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, धन्यवाद आपकी ध्यान के लिए, और आगे बढ़ते रहना।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि

केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम का बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास हो गए मित्रों, कुछ पाना है, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, हैं, जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, हैं, अमान दिमानी फ्यावन लूर खदराज ऑफ़न्दी प्रशोध, हैं मित्रों। तो धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा। और धर्म का नहीं मित्र, धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिसना अतोरी, साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखते हैं, ये मायने रखता है, और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं, खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैले, वो कराई से कोई न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को। जरिया थोड़ो बदले है तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के, उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ध्यान करना, आप अपने बाल बच्चों को अब खुद समझे। विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता हो ज्यादा देर तक कायम यानी टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

और नई सुबह का नया नजराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। हर नई सुबह का नया नजराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम नमस्ते। धर्म करम फाह हिंदुस्तानी रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फाह हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून है। फाहन के टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। जो भी करना है सोच समझ के कीजिए।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सीताराम सीताराम कहिए, अनूप जलोत्रा के आवाज में सुंदर सा भजन आप सुनेंगे।

राम कहिए, धर्म कर्म फाउन हिंदुस्तान रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगर आप ये भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 तक 3 5 2 2 4 0 पर। आपको तार करना है हे गोविंद हे गोपाल सुमन कल्याणपुर के आवाज में। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो। आप सभी को राम राम नमस्ते।

धर्म कर्म फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हर एक काम के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारा दफ्तर से 9 0 5 2 2 8 4 0 हमारा ताक का नंबर है। अगर आप ये भजन का प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आप भी सीडियो में तार कीजिए या दफ्तर में तार कीजिए। एक बार दोहराता हूँ फिर से, तार का नंबर 9 0 5 2 2 8 4 0 पर आपको तार करना है। आप सभी को शुभ दिन कहते हुए एक दूसरा शिव भजन प्रोग्राम में चलेगा।

शंकर भोलेनाथ का भजन भी आपने प्रोग्राम में सुन रहे थे। बहुत से लोग हैं जो माता की पूजा करते हैं भी, और क्यों न एक माता का भजन चला जाए। और जो मैं भजन चुन के रखा हूँ वो है हे माँ दुर्गे, आप सभी के लिए, हर एक भक्तों के लिए जो माता का भक्तों है और माता का पूजा करते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह जब जागते हैं तो कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव का पूजा करते हैं, हनुमान स्वामी का पूजा करते हैं, राम का पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत से लोग हैं जो माता दुर्गा का पूजा करते हैं। तो आप सभी के लिए

अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे, रॉक नाम से तार के आए श्रीमान हरि बंसी, और वो एक हनुमान भजन सुनना चाहता है। तो भाई हरि, आपके लिए मैं चुन के रखा हूँ, सुन लो पुकार हे बजरंग बली, श्रीमान हरि बंसी के लिए।

सीताराम सीताराम कहिए फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है धर्म क्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हर एक काम के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारा दफ्तर से 9 से 5 2 2 2 3 5 हमारा तार का नंबर है। अगर आप ये भजन प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, तार कीजिए। तार का नंबर फिर में दोहराता हूँ, अपना अखंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए। न्यूज़ तक दिलचस्प है टू टू फिर सिर्फ पर आपको तार करना है। घर में पधारो गजनंदन शिव गणेश भजन प्रोग्राम में आप सुनेंगे।

घर में पधारो गजानंदी, मेरे घर में पधारो। ओम साय नमो नमः, श्री साई नमो नमः। बहुत से साई भक्त भी है दुनिया में, और सभी साई भक्तों के लिए मैं चॉइस करके स्पेशल फा होन हिन साई रेडियो के जरिए ये भजन पेश करता हूँ। आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो।

ओम साई नमो नमः। घड़ी को देखता हूँ तो 11 मिनट बाकी है इस वक्त 8 बजने में 11:48। अब की बार एक फिल्मी भजन आप सुनेंगे, ओम जय जगदीश हरे।

बजकर 2 मिनट बीत गया है। तो मिनट ऊपर आखे आप ही का हैप्पी स्टेशन फा हो हिंदुस्तानी रेडियो खुद मोर्ख नीदरलैंड। अगर आप नौकरी का तैयारियां कर रहे होगे तो आराम से कीजिए, अगर आप शुरुआत कर दिए होगे तो काम भी आराम से जोर तोर से कीजिए दोस्तों।

सुना है सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान एक बार जरूर कबूल करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जिंदगी दी है तो जिंदा रहने का अधिकार भी दूं।

मोहब्बत के

मुकेश के आवाज़ में सॉन्ग भी आपने सुना। दोस्तों आज जब बृहस्पतिवार है तो बाजार का दिन नहीं है, हाक स्मारक बंद है। हाक स्मारक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को खुला रहता है, लेकिन स्टीफन रात पे वहाँ पर एक बाजार है जो हर एक बृहस्पतिवार को लगता है। अगर आप बाजार का सामान खरीदना चाहते तो आप जा सकते हो स्कीफनिंग स्टीफन रात में। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि फाउंडेशन रेडियो आप ही का रेडियो है, यकीन कीजिए हर एक काम आपको जो रेडियो के सरे कराना है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए भी हमारे दफ्तर से। निल सीफ तक ग्रीस एस फाइव टू एट वही फिर सीफ आप पर आपको तार करना है। किशोर दा हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में आप सुनेंगे ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुहा कीजिए किशोर कुमार।

वो मेरे दिल को चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कभी कभी चैन दिल को बिन दुआ करे भी मिल जाता है। बात यह है, अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो दिल में हमेशा चैन रहेगा। आज और कल फिल्म का नाम है सुंदर और नंदा, कमाल किया फिल्म है दोस्तों। ये वादिया ये फिसाए बुला रहे हैं तुम्हें। रेडियो फाहन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। बृहस्पतिवार है, सितंबर के 3 तारीख हो गया है।

या फिसाए बुला रही है तुझे। दोस्तों आज बृहस्पतिवार तो आपको मन होना चाहिए कि बड़े रास्ते पर बहुत से जगह पर फरकेर फास्ट एकदम बंद है। फरकेर जैसे कि आफिर और आतवाल पर फरकेर का प्रॉब्लम है, जैसे कि रोटरडाम ना देनहाग और साथ ही साथ आतवाल देनहाग ना दित्रह रीवे के आसपास में वहाँ पर फरकेर एकदम बंद है। खौदा आप तुम तक जो है खौदा अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी फरकेर का प्रॉब्लम है। तैरब्रेक्स प्लेन वहाँ पर लगभग 15 किलोमीटर का फीडर लगा हुआ है। अगर आप बड़े रास्ते पे हो तो इस बात पर सारा ध्यान रखना। ये 12 बजे के बाद उस्ताद गंगा का प्रोग्राम आप सुनेंगे।

कि आपके आंखों में कुछ महके हुए से राज है। दोस्तों लगभग 20-25 साल के बाद है पहले सूरीनाम जिसमें उतना चोरी चंदारे नहीं होते थे और हॉलैंड जिसमें भी नहीं होते। अब समय बीतता जा रहा है, ये हम सूरीनाम जाते हैं वहाँ जब चोरी होता कोई किसी के ताश घींच के चला जाता है, मोटरकार चोरी कर लेते वगैरह वगैरह, तो हम सब कहते हैं कि सूरीनाम देश में बहुत हड़ताल बहुत चोरी चंदाली हो रहा है, अब हम न जावे। लेकिन हॉलैंड देश में भी जोर तोर से ये सब चोरी चंदाली हो रहा है। दोस्तों वाडिंगफे में क्या हुआ है, एक नौजवान, एक 14 साल का नौजवान अपन स्कूटर से पार्कलैंड का जो स्पेल एलन वहाँ पर था, तो दो बनमा दो चोर जाकर उनका सूट उन्हें बरूफ किया है। दोस्तों मैं सांदल करके स्कूटर लेकर चला गया, सिपाही वहाँ पहुँचा तो नौजवान अकेले वहाँ खड़ा था, रो रहा था, तो सिपाही खतई खोज रहा था। साथ ही साथ उसी पार्कलैंड के आसपास में भी एक 75 साल का औरत के शोल्डर में से ताश भी घींच के और चोर लोग भाग गया है। ये हुआ है वादिंग फेन में। माइटी मुकेश एंड आशा भोसले, क्लासिक सॉन्ग डुएट चलेगा प्रोग्राम में।

सो देन हक में एक बहु कॉम्प्लेक्स पर वहाँ के लोगों देखा कि दो आदमी बहु ट्रेन पर घूम रहा है, तो सिपाही को तार के सिपाही वहाँ पहुँचे तो ये दोनों आदमी पोर्ट में ही कूद के और भाग जाता है। तो सिपाही पॉलिसी हॉर्न के साथ वहाँ पहुँचा। जब पॉलिसी हॉर्न को सिपाही छोड़ा तो उनमें दो में से एक खड़ा हो गया और दूसरा आदमी पोर्ट फिर से कूद के और अंदर जा रहा था। तब सिपाही का जो पॉलिसी हॉर्न है उसका गोर पकड़ लिया, उन्हें काटा है। ये हुआ है देन हाक में, ये भी होता रहता है दोस्तों। अच्छी बात है कि आसपास के लोग जब कुछ देख लेते हैं तो सिपाही को तुरंत तार कर देता है।

पर आप चून है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हुआ तेरे और अदर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

किया हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रुकनहा सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक 3 5 2 8 2 4 सीफ आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस 1968 इंडिया का प्लेबैक सिंगर, न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ऑर्डर्स, माता पिता मलेशिया से थे और न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीगर में, तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एसडी बर्मन को गुरु के तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना, उसके चेहरे पर मत आना, उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टीरी किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टीरी में, यानी फेरिस्ताइट में स्टीरी के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवतैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह टक में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

1996 में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाए सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में इन देर तक मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों। फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारह फैफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक डबले क्रेज खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप ट्यून है

जी की एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। अर्जुन कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठे हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

चित्र के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निकली 68 की बात है जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ। शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप चुन है हमेशा आप फाहुन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यू सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंडे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों ये फिल्म, जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल द्री सीफन तक पे जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज़ ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज़ क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज़ निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज़ उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आदमी इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ़ किया मुमताज़ जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज़ अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज़ उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज़ का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहों ने सारे पर आप चुन है।

आहन हिंसानी पर आप चुन है और यहाँ सारम होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

किया हो तेरे वाला दरभर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार टू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रुकनहा सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस निगरी 68 इंडिया का प्लेबैक सांगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ऑर्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीगर तक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक अपले ने कभी नहीं किया, सिर्फ स्टीरी किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टीरी में, यानी फेरिस्ताइट में स्टीरी के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवतेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

1967 निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाए सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हम सफ़र। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप ट्यून है, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों। फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आइए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, ग्यारह फैफन शस्तक तो निगरी सीफन तक जबले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, वी फाउन एफ एम पे इंटरनल पर, वी फी रेडियो है इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो 12 का वक्त है, क्लॉक स्लाख द्वारा फिर, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दरहा शहर से। जो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी गर्मी कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले कार्यक्रम पेश किए भैया राजन द्वारका जी, भैया राजन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक शुभ शाम। बस आहिस्ता घर पहुँच जाइए और एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के जरिए और मेरे जरिए। भैया राजन द्वारका, खुद मेरा फैन मेरा, दोंदरदागिरी सितंबर है, यानी गुरुवार बृहस्पतिवार 3 सितंबर आप तत्पर है। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जिस देश में भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, जो भी कीजिए और आहिस्ता कीजिए और संभाल कर कीजिए। सुबह होगा या शाम होगी या रात होगा, आप सबको एक शुभ दिन, एक शुभ शाम, एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है आप जहाँ भी होंगे। मैं रहूंगा करीबन 3 बजे शाम तक, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे। मैं आपका सेवक गंगा, गला थोड़ा बैठा हुआ है लेकिन फिर भी बोलते बोलते कुछ ना कुछ जरूर इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से गीता रॉय जी आपको सुना रही है।

फिल्म प्रेम गीत में से निकाल कर ये गीत हम चलाए हैं अनुराधा पौडवाल के आवाज़ में ओहर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, एवरग्रीन किशोर कुमार। चलिए सुनते हैं मिलके वो आप सबको क्या सुनाने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार।

हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। फिल्म का नाम है, टाइटल सॉन्ग निगत इंद्रियन ताख्त 1983 का ये फिल्म है और हमने पेश की आपके लिए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए लता जी और मैथी मुकेश, चलिए इन दोनों के बातचीत का और क्या ख्याल है, लता जी की और मुकेश जी का क्या ख्याल है, चलो इन दोनों के ख्याल के बारे में सुनते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं।

लता जी और माई तू मुकेश आपको सुनाए चल सन्यासी मंदिर में। ये कमंडल और प्रेम के बीच ये मंदिर भी आ गया और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए फिल्म सन्यासी में से निकाल कर। आप चुए हैं फाम हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं एक बार फिर है एवन ग्रीन किशोर कुमार जी तो है। आशा जी के साथ

प्यार की मुझके क्या नजर डाली, एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आपको सुनाए। मिश्रित रक्त का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है साज से यही पता चलता है कि शंकर जय किशन के साज पर ये आपको सुनाया गया। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, ये हाँ तो इत्मीनान से बैठ जाइए और ये गीत को सुनिए, क्योंकि ये गीत एक बात दिल में आई है तो देखते हैं दिल में अगर आती है तो दिल से कहाँ उतर के जाता, दिमाग पर या कहीं भी।

एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ, आपको सुनाया गया ये द्वैत। मैं तो यही कहूँगा कि कह डालिए, वरना कोई और कह डालेगा। बहरहाल अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, चलो सुनते हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में। रफ़ी साहब और आशा जी, फिल्म कारवां में, तो क्या ख्याल है इस तरह से।

अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे। फिल्म कारवां, जिसे कितने लोग कारफान कहते हैं, लेकिन फिल्म है कारवां। कारवां में से निकाल कर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी। बेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जा रहा है। तो लीजिए ये गीत हम चला रहे हैं उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए। तो इस तरह से ये गीत

वादा रहा प्यार से प्यार का, ये शानदार गीत चला उदित नारायण और श्रेया घोषाल आपको सुनाए हैं। और ये गीत हमने पेश की विदर्भ के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया जी, उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने पेश की आपके नाम पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। आओ तो क्या ख्याल है, ये गीत इस तरह से आ रहा है। आशा जी फिल्म प्रेम गीत में से।

तेरे गीतों की, जी हाँ तेरे गीतों की मैं दीवानी ओ दिलबर जानी, आशा जी और साथ ही मिल के फिल्म प्रेम गीत में आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ और वो है सुतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए। तो मीला जी बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको दिया जा रहा है फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के जरिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला गीत है मीला जी के लिए सुतरमेर के रहने वाली और गीत इस तरह से है, जी हाँ

दैया ये कहाँ फंसी, कैसे फंसी, वाह क्या बात है। आशा जी की आवाज़ में ये शानदार पेश हुआ गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। और ये गीत हमने निकाले फिल्म कारवां से, आशा जी के आवाज़ में। चलिए यहाँ से देखते हैं आपको क्या सुनाऊँ। चलिए ये गीत इस तरह से आ रहा है, हाँ

लता जी की आवाज़ में सुना गया मुकद्दर का सिकंदर में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की ओ फरफा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो।

अच्छा जी, देखते हैं फिल्म हमसाया। फिल्म हमसाया में से निकाले हैं ओपी नैयर के साज पर अब ये गीत हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं? आप सुनते रहना।

सागर जैसे आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में और आरदी बर्मन के साज पर। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत फिल्म हमराज में से निकाल कर। हाँ,

क्या बात है, उदित नारायण आपको सुनाए फिल्म फिल्म हमराज में से निकाल कर हमने चलाए उदित नारायण जी की ये शानदार गीत। तो क्या ख्याल है,

दिल चाहे आसमां पे लिख दो, लेकिन कहीं भी तो लिख दो भाई। और आशा जी, और देखते हैं, हाँ घूम गया, नाम दिमाग से निकल गया, बैर, हाँ शबीर कुमार, अब याद आया, शबीर कुमार, आशा जी और शबीर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत इस तरह से है।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल को चुराने वाला आपको सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं अलका याग्निक जी, और देखते हैं इस तरह से।

एक कागज कलम की क्या जरूरत है, दिल पर लिख दो वाकिया बातें। ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं अलका याग्निक और शबीर कुमार मिलके, अन्नू मलिक के साज पर हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा लहू। अच्छा, तो चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है।

लता जी आपको सुनाए हैं शंकर जयकिशन के साज पर फिल्म अनाड़ी में से निकालकर हमने शानदार गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हाँ, और वो ये है, चलो सुनते हैं ये गीत। गीत का बोल है हुस्न ए ईरान। चलो देखते ईरान से कौन हसीना कौन महजबीन आया है।

जी हाँ शारदा जी, जी आपको सुनाए फिल्म इंटरनेशनल कुड़ूक में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए शंकर जयकिशन के साज पर और आपको सुनाए। अगला गीत मैं अगर मैं इसे पढूं तो अलका जी की गीत है, फिल्म गुमनाम का है, नया गुमनाम, पुराना गुमनाम नहीं, नया गुमनाम, तो रोशन आह का है ये और टेक्स्ट है ना होने देंगे। अब चलो सुनते हैं कि क्या ना होने देंगे, क्या ख्याल है इस तरह से।

तो आपने सुने कि क्या होने न देंगे, वह क्या बात है, अलका याग्निक और कुमार सानू मिलके यह मिस्ट्री गीत आपको सुनाएं फिल्म गुमनाम में से निकाल कर। अगर आपका इंतज़ार है, जी हाँ, अगर आपका इंतज़ार है किसी का, तो आप अपने घर सजाएंगे, सुधारेंगे, यानी कि सभी असबाब अपने जगह पर रखेंगे इंतज़ार में कि कौन आ रहा है।

वह क्या नाच है, सांसों का चलना, दिल का मचलना, उदित नारायण और अलका याग्निक जी दोनों मिलके आपको सुनाए नदीम सरोवर के साँझ पर फिल्म फिल्म फिल्म जीत में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।

ये प्यारा द्वैत हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं।

दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फिल्म उपासना में से निकाले हैं मैथु मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। फिल्म मेरे सनम 1967।

वाह क्या बात है, रोका कई बार मैंने दिल की पसंद को और ये गीत चला। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, एक बार फिर आशा जी के साथ।

तुम्हारा चाहने वाला फिल्म कहीं दिन कहीं रात 1968 का निगदी अख्त से अस्तक का ये फिल्म, ये भी ओपन अय्यर के साज पर हमने आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत है, प्लेयर में हमने रखे हैं, बस सिर्फ बटन दबाना ज़रूरी है। क्या ख्याल है मैं तो मुकेश का ये द्वेत।

जइयो कहाँ ए हुजूर माई तो मुकेश। आओ लता जी आपको सुनाए ये गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। होली तो बीत गया लेकिन फिल्म तो बना था होली आई रे। निगदी सेफन तक का ये फिल्म है होली आई रे, उसी में से हम सुबह आपको सुना रहे हैं।

कल्याण जी आनंद जी के साज पर मेरी तमन्नाओं की तकदीर मुकेश जी की आवाज़ में आपको सुनाएगा। यानी कि इतनी सही फिल्म तक का ये फिल्म है, फिल्म होली आयर में से निकाले हैं। चलिए एक दो गीत और चलाएंगे, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सुना दूँ।

तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, झूठ बोलने का काम नहीं, सीधे बोल दो। बहरहाल ये गीत आपको सुनाए शाम के कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं, शायद एक गीत या दो गीत और चला सकेंगे, लेकिन हम आपको सुनाएंगे ये गीत।

हम तुम कितनी बार मिले हैं, कल्याण जी आनंद जी के साज पर फिल्म हीरा और पत्थर में से निकाले नेगेटिव सेफ तक का ये गीत है 1977 का। चलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है आखिरी गीत आपको सुना सकेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।

यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की आज 2/3 सितंबर का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और ऐप किए तार किए इतरह के रहने वाली बेया जी और सुदरमेर के रहने वाली मीला जी और उनके खाबीन भैया मंसूर जी, आप सबको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा पेश किया जा रहा है ये शाम के कार्यक्रम में जो आपने भाग ली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाद आप सुनेंगे मेरे सहयोगी, बारी बारी आपके सेवा में रहेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला जोंदा यानी रविवार को गीत और गज़ल के कार्यक्रम लेकर भैया यूसुफ के साथ 8 से 10 बजे तक। आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है और मुझे इजाज़त दीजिए। सबको नमस्कार।

भोला है और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके फरियाद कर रही है ये तरसी हुई है निगाहें फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें और देखे हुए किसी को ज़बाना गुजर गया है देखे हुए किसी को ज़माना गुजर गया है और जब किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जब अगर दिल के अरमान जो है वो जब टूट जाते हैं तो आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

0: और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जो कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बन होगा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं, न सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं और हम सुनते हैं और देहाबी प्लस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं। नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर। और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारो से ना पूछो अलाम इंतजार का, और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों। मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी और चोरी। चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा दादा नहीं परमा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। ये किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैं थी मुकेश नाइटिंगेल, लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीनत अमन मनोज कुमार ने काम किए हैं और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आंख को, मैं भी आंख को कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आंख को कैसे भूलेगा। हमारी यारो की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैति गे लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर। जोकर तो आओ मिलकर सुना जाए।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। Full hot one.

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंगड़ी की और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

फुल रीमिक्स सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे, एक और हो जाए।

दोस्तों आज हम रिमिक्स के मोड में हैं और जरगेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमिक्स ही रिमिक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोंग की ओर। आओ सुना जाए ये क्या है।

और तू अनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा सॉन्ग है, रीमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हम आज झुमाते हैं, नचाते हैं, आओ सुना जाए।

En beste luisteraar, Aantje Remix के मोड में है, आज Remix के मोड में है, तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने सारी दुनिया तेरे लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं, आज रिमिक्स के मूड में हम हैं और रिमिक्स के मूड में हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं, और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे, और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉटवॉन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

0: DJ Saran.
1: हम किसी दूसरे की अमानत है।
2: तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।
3: हाँ, और समझो हम दोनों की प्यार के बीच में कोई आया तो वो समझो कि वो मर गया है।

और जीना दुश्वार हो गया है। तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं। तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के और हम जाते हैं। तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

और हमसे तो हमारे लयस्तरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और मही कल हो ना हो हमारे प्यारे जनता की कहते हैं दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

पुरवाना तो और जरूर टूट जाता है कभी कभी वादा, जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बरी गुमान प्रती वोमन कहो ना कल हो न हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर ले जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, मूवी का नाम है जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

ओरे तेरी दर से ये दिल आमाद हुआ हमारी दोस्तों, तो कहते हैं बिन तेरे अधूरा हूं मैं, तू मिल जाए तो जॉनी पूरा है। और कहते हैं दो चार दिन का इश्क हम नहीं किया करते हैं, और गए का इश्क हूँ यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं, और गए का घर का और इश्क हूँ और को यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं, तू मेरी सबसे खूबसूरत भूल है, तू मेरी सबसे सबसे खूबसूरत भूल है, तेरे हर खुशी और गम मुझसे कबूल है। अलका यागनी और शंकर महादेवन की ओर हम चलते हैं हमारे यारो।

और छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तू मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और ज़रूरत हो तो मेरी, ज़रूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो ये और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम। यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो, दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फुल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, सिंगरेश मैथी मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नाइटिंगेल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने से मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमन करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम सब फिर एक बार ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो गए हैं। अभी बबली जी एंट्री ले रहे हैं, फिर शांता जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में। बबली जी,

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। प्रकाश प्रोग्राम में मारी चश्मा थोड़ा हिल गए। ऑन है आप चालू हो गए। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी का हार्दिक से स्वागत है ये ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। हमारे साथियों जो आज उपस्थित है उन सभी को भी हार्दिक से स्वागत है।
1: शांता जी आपको हार्दिक से स्वागत भी किया जाता है, बबली जी आपको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है, और हमारे साथ

0: साथ और हमारे कोलेगास जो ज्योति का प्रकाश के यहाँ पर उपस्थित थे, शांता जी, बबली जी और मैं और हमारे कोलेगास साथी मीनाक्षी जी जो अभी रास्ते में है वो भी आने वाले हैं, और अनुराधा जी जो तैयार हो गए हैं भारत से हमारे साथ देने के लिए। पर शांता जी ये बताइए, हम लोगों ने कौन सा त्यौहार जल्दी मनाने वाले हैं? ये महीना जो ज़्यादा तादाद में सितंबर महीना में मनाया जाता है। अष्टमी
1: जी, कृष्ण जन्म अष्टमी उनका परियारदाह जो है हम मनाएंगे। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, बबली अपना जन्मदिन, मैं भी अपनी जन्मदिन मनाती, तो कृष्ण जन्मदिन भी हम मनाएंगे बड़े समारोह के साथ।
0: और होलांत में हर एक मंदिर जो इस समय तैयारी कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के, और यानी कि उसमें कार्य करने को, और ख़ास करके होलांत से काफ़ी बस जो रविवार को छूटने वाले हैं जा रहे हैं राधा देश ना।
1: अच्छा,
0: राधा देश में भी बड़ा में मनाया जाता है। और इस पे बबली जी आप और क्या कहने वाले हैं?
2: इस पे मैं और ये कहने वाली हूँ कि लोग बस से भर भर के राधा देश जाते हैं, और ये उत्सव वहाँ पर 3-4 दिन लगातार चलता है, और इतनी भीड़ होती है, बहुत भीड़, जैसे भारत में भीड़ होती है वैसे यहाँ पर राधा देश में भीड़ होती है।
0: राधा देश में भी भीड़ होते जैसे भारत में, भारत के बारे में कुछ बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से वहाँ मनाया जाता है।
2: जब हम छोटे थे तो अपने अपने घर के आगे रंगोली बनाते थे,

और छोटे छोटे बच्चे राधा जी और कृष्ण जी बनते थे और एक नाटक खेलते थे सब। तो हम छोटे थे, ये हर साल ये ऐसे क्यों करते हैं, बचपन में नहीं मालूम होता ना कि कौन सा त्यौहार कैसे है, जैसे जैसे बड़े हो वैसे वैसे पता चलता है। तो फिर देखा हमारे बाजार सजे होते हैं, वहाँ पर भी नाटक होते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, मंदिर भी सजे होते हैं, सुबह 5 बजे से लोग 4 बजे से मंदिर में खड़े हो जाते हैं।

0: भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जब हम छोटे थे तो सबके घरों के आगे रंगोली बनती थी, सबके नहीं एक घर के आगे रंगोली बनती थी और उससे सजावट होती थी। छोटे छोटे बच्चे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी बनते थे, नाटक होते थे। तो हम सोचते कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बचपन में मालूम नहीं होता ना कि कैसा त्यौहार होता है ना शांता जी। और जैसे जैसे बड़े हो वैसे वैसे पता चलता है कि कैसे त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है। और बाज़ार भी सजे होते हैं, वहाँ पर झांके निकलती हैं और लोग जुलूस भी निकालते हैं। आपको पता है शांता जी जुलूस?
1: जुलूस अभी आपने कहा झांके, ओकरे मतलब का?
0: झांकियाँ मतलब कि सब राधा कृष्ण बनके एक बड़े ट्रक में या गाड़ी में बैठते हैं और उसका जुलूस निकालते हैं। आप क्या कहते हो, ओप्त क्या कहते हो? हाँ
1: ऐसा। और यानी कि हर एक प्रांत में इंडिया में ऐसा ही होता है ज़्यादातर।
0: मथुरा वृंदावन में तो और ज़्यादा होता है और दिल्ली और सब अपने अपने प्रांत में सब मनाते हैं
1: ऐसा।
0: हाँ जी।
1: तो सुनने वालों हमारे साथ शांता जी कहाँ के निवासी? कंडाल के निवासी ना, तो वहाँ पर उस तरफ में कैसे मनाया जाता था?
2: वो समय के मुझे पता नहीं है, पर जैसे बबली कहे ना ओप्तोह, तो ओप्तोह ये कहे तो वो कभी कभी जैसे ओना फांकल खाते रहे ऐसे फगुआ रहे तो उस समय पे भी ऐसे ओप्तोह निकलता था। पर जो भारत के कहे तो भारत में तो मथुरा में और
0: वृंदावन
2: में ये तो उनका कृष्ण जी का उसका जन्म भूमि है ना।
0: सही बात,
1: जन्म भूमि बिल्कुल।
2: हाँ, इसलिए वो और प्रसिद्ध है।
0: हाँ जी। और शांता जी वहाँ पर तो एक हफ्ता तक चलती शायद कृष्ण जन्माष्टमी और होली भी
2: जी,
0: क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से मनाई जाती है मथुरा और वृंदावन में।
1: और मुझे ये बात के ख्याल है कि एक प्रोग्राम बन रहा था कुछ साल पहले के बात है,

0: het Hindoeïsme is Krishna een van de belangrijkste en meest vereerde goden. Hij is de 8e incarnatie avatar dan van de god Vishnu.
1: तो भगवान शांताजी कहने के तात्पर्य यह है कि कृष्ण भगवान जो भगवान विष्णु का अवतार है सुनने वालों हमारे साथ हमारे कोलेखा साथी और आकर पहुंच गए बहुत दूर से और आकर के पहुंच गए स्टूडियो में तो आपको स्वागत किया जाता है माताजी और हार्दिक से स्वागत करते हुए आज कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में कुछ संदेश हम लोग रखने वाले हैं अनुराधा जी जो अभी इंडिया से जुड़ने वाला है और आप भी पहुंच गए हैं कितना मुश्किल से क्योंकि दनहाक में सब रास्ते टूटा फूटा है फिर भी आप आकर के पहुँच गए तो हार्दिक से स्वागत आपका और स्वागत करते हुए आप अपना एंट्री लीजिए
2: जी जी आप सबको नमस्कार वाकई में आज मैंने पहली बार कभी मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम होगा लेकिन आज तो मैंने भी ट्रैफिक को फेस किया तो थोड़ा सा आने में देर हो गई इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और कृष्ण
1: जन्माष्टमी में कोई देर नहीं हुआ क्योंकि कार्यक्रम तो अभी शुरू होना हुआ है पर ऐसा होता है कि देखो कभी कभी रास्ता ऐसा बंद कर देते हैं कि निकल के आना मुश्किल पड़ जाता
2: है जी जी बिल्कुल यही बात
1: ऐसा न सिर्फ यहाँ होता है सूरीनाम और इंडिया में भी होता होगा
2: इंडिया में तो ये एक आम बात है
1: पर वैसे नॉर्मल यहाँ पर तो ठीक ठीक रहते हैं
2: हाँ
1: और शांता जी जो अभी संदेश रख दिए कि कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो उस पर आप थोड़ा से गौर कीजिए और बताइए हम सबको कि आप अपने समय पे कैसे क्योंकि बबली जी तो कह रहे थे कि रंगोली बनाते थे अपने द्वार पर ये रंगोली है क्या और कैसे बनता है
2: ये तो कृष्ण जन्माष्टमी तो खैर इसमें कोई दो राय है ही नहीं सनातनियों और हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है क्योंकि साक्षात भगवान ने इस दिन जन्म लिया और जन्म भी काफ़ी मुश्किल कठिनाइयों में उन्होंने जन्म लिया और जन्माष्टमी को मनाने के लिए तो फिर सभी लोग अपने घर में व्रत उपवास रखते हैं घर को अच्छा सा जिस तरह से आपने कहा कि रंगोली से भी सजा सकते हैं घर को कैसे भी सजा सकते हैं और मेनली तो यही होता है उस दिन उपवास रखा जाता है और फलहारी भोजन बनता है तो फलहारी भोजन तो कई लोग तो पूरे टाइम के लिए उपवास रखते हैं पूरे दिन भर के लिए लेकिन कुछ लोग ये है कि भाई दूध फल बीच बीच में खाते रहते हैं और रात के 12 बजे जो कि भगवान कृष्ण का जन्म का समय है क्योंकि उनका जन्म रात के 12 बजे हुआ था तो उस वक्त फिर उनकी भगवान को भोग लगाया जाता है पंजीरी बनाई जाती है ख़ास तौर पर और उसमें तुलसी दल डाल के और उनको अभिषेक कराया जाता है पंचामृत से और फिर और फलहारी चीज़ें सब होती हैं जब भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है करके अभिषेक करके उनको भोग लगा के करके फिर सब लोग घर के इकट्ठे लोग बैठ के फलहार भोजन करते हैं और इस तरीके से फिर रात को और मंदिरों में भी जाते हैं क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर के पास तो एक मंदिर था तो मैं ये सोचती थी कि सड़कों पे इतनी भीड़ रात के 12 बजे कैसे हो जाती है और मंदिर में वो प्रसाद पाने के लिए पंजीरी का और वो उनका पंचामृत पाने के लिए किस तरीके से लोग उमड़े रहते हैं कि बस हमको भी मिल जाए वो प्रसाद इतनी भीड़ होती है तो मतलब लगता ही नहीं कि रात है ये
1: तो, क्योंकि त्योहारों में देखो नवरात्रि हाँ, हम सब रात्रि में मनाते पर ये खास करके हाँ, ये एकदम 12 बजे रात को
2: 12 बजे और उससे पहले जैसे मंदिर के आसपास कोई जगह होती है तो वहाँ पे झांकियाँ लगाई जाती हैं उसमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित मुख्य इम्पोर्टेंट जो भी घटनाक्रम है उनको दिखाया जाता है तो बच्चे लोग तो बहुत ही खुश होते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कई वर्षों से देख रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के समय थोड़ी बारिश जरूर होती है ये क्योंकि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो बहुत तेज बारिश थी और वसुदेव जी उनको अपने सिर पर लेकर जा रहे थे और किस तरीके से जमुना उछल रही थी, तो कहा यह जाता है कि भाई भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाह रही थी माँ जमुना, और इस तरीके से वो बड़ी मुश्किलों को, खतरों को पार करते करते वो भगवान कृष्ण को लेके गए माँ यशोदा के घर। तो बारिश जरूर होती है इस दिन,
1: अभी ये समय जरूर है, एक चीज है कि बारिश होना है।
2: हाँ,
1: ये भी मैंने इस बात पे, जैसे आप कह रहे हैं, मैं, मुझे भी ये होता है कि हाँ कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे हाँ बारिश हर साल, देखो कितना हाँ। प्रकृति कितना अच्छा रूप से रचा गया है
2: हाँ।
1: कि समय चाहे एंड में हो सितंबर के या शुरुआत में हो, पर वो समय खास करके बारिश होएगा। और हर एक देश, दुनिया पे लगभग 200 देश और दुनिया पे सभी जगह कुछ ना कुछ भगवान अपना झलक दिखाते हैं।
2: हाँ नहीं, जब बारिश होती है तो हम बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस वक्त भी बारिश हुई थी, तो भगवान उसी घटनाक्रम को साल दर साल रिपीट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज बारिश होने का, क्योंकि जब हम, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे छोटे थे, उनको लेके मैं झांकी वगैरह दिखाने जाती थी तो या तो बारिश होने वाली होती थी या रास्ते में बारिश हो जाती थी और हम भीग जाते थे, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं होता था, वो फिर भी झांकियों को देखने के, बारिश में भी झांकियों को देखने के लिए बच्चे इतने आतुर रहते थे। और फिर सामने वो उधर ही मार्केट में बहुत बढ़िया मेला सा लगता था, बहुत चाट पकौड़ी है, भगवान इनका, कृष्ण भगवान का धनुष है, कुछ है, तो बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते थे, गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचते थे, खाओ पियो, खूब फूल मालाएं बिक्री होती थी, बहुत मज़ा आता था उस वक्त, तो लगता था कि हाँ आज त्यौहार है और हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इस बार मैं यहाँ पे हूँ नैदरलैंड में, तो वो मैं कुछ बिल्कुल, हमारे दिल्ली में हम क्या करते थे वो नज़ारे कुछ भूली भूली सी हो रही हूँ, लेकिन फिर भी अब जब ये आपने ये प्रोग्राम किया तो मुझे कुछ याद आ रहा है और हम किस तरीके से उसको एंजॉय किया करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था बबली जी भी उंगली उठा रहे थे, तो बबली जी आप कुछ कहने वाले हैं?
3: हाँ जी, मैं ये कहने वाली थी आंटी और शांता जी, कि मेरे बेटे का जन्म भी 23 अगस्त को हुआ।
2: अच्छा,
3: और दूसरे दिन जन्माष्टमी थी और इतनी बारिश आई। हाँ जी, तो वही इसकी नानी और मामा कहते हैं इसका नाम कृष्ण रखो
2: जी।
3: तो कृष्ण भी है, विवान भी है, दोनों नाम है, मार्क्स भी है, सब कुछ है। हाँ जी, वैसे जन्माष्टमी आंटी अगस्त में आती है, इस बार सितंबर में।
1: हाँ, अगस्त सितंबर में ऐसे ही
2: आई में या सितंबर हाँ में, जिस तरह से दिवाली अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के बिगनिंग में आ जाती है, तो ये अपने समय के चाल के अनुसार ये तय होता है कि किस दिन होती है। तो बहुत बड़ा त्यौहार पर्व है और भगवान कृष्ण के चरणों में हम तो समर्पित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो संदेश और जो उपदेश अर्जुन को दिया है गीता में, और उस उपदेश में ऐसे तथ्य उपस्थित हैं कि मानव जीवन की हर एक समस्या का समाधान आपको गीता में मिलता है। भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है, और इस वक्त वृंदावन में तो क्या माहौल है, कितना आनंदित हैं लोग, और पता नहीं कहां कहां से लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए वहां पहुंचते हैं, वहां पे वृंदावन में, और बहुत एंजॉय करते हैं, खूब खुश होते हैं।
1: चलो एक गीत सुनते हैं, और गीत के बाद, क्योंकि अनुराधा जी भी बेचैन हो रहे हैं उधर से हमारे साथ ज्वाइन करने को, पर थोड़ा से एक गुलशन कुमार टी सीरीज के एक सुंदर सा सॉन्ग रखता हूँ।

0: तो सुनने वालों, यहाँ जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में हम सब कुछ न कुछ संदेश रखने वाले हैं और रख रहे हैं, तो हमारे साथ मीनाक्षी जी जो अपना संदेश सुनाए कि किस प्रकार से भारत में मनाया जाता था। पर मीनाक्षी जी, मैं अभी ये प्रश्न रखने वाले थे कि एक बार हम लोग कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी के बना रहे थे, तो कुछ कहीं पर लाठी से कुछ होता है, आपको पता है कि कुछ मथुरा या कहीं पर कुछ होता है? कुछ
1: वो तो होली के समय होता है, लठ मार होली।
0: क्या कहते हैं उसे?
1: लठ मार होली कहते हैं, लठ से खेली जाती है वो।
0: ओ, वो लठ मार होली,
1: इसलिए उसका नाम लाठी से आपको ध्यान होगा। कृष्ण जन्म,
0: हाँ हाँ, वो कृष्ण जन्म इससे कुछ संबंध नहीं,
1: नहीं
0: है।
1: वो अपनी चुन्नी का उसको राउंड उसमें बल दे दे के उसका कोड़ा बनाते हैं,
0: हाँ,
1: और उस कोड़ों से मारते हैं
0: भाग भाग
1: के। हाँ, ये होली के टाइम होता है। जन्माष्टमी तो बहुत प्यार और दुलार से मनाई जाती है।
2: और एक मटका जो ऊपर लटका है,
1: हाँ, वो गोविंदा,
2: हाँ, तो वो कृष्ण जन्म,
1: हाँ,
2: वो
1: कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पर होता है और महाराष्ट्र में बहुत होता है।
2: हाँ, ऊपर वो टांग देते हैं, हाँ, ना मटका,
1: हाँ,
2: या कुछ भी,
1: हाँ, सब वो अपने ना इंसान की सीढ़ी बनाई जाती है, ऐसे घेरे में, घेरे में घेरे पिरामिड की तरह, और जो सबसे वाला ऊपर होता है वो मटकी को तोड़ता है और वो लेकर आके वो प्रसाद भगवान का सब वितरित होते हैं।
3: पैसे भी होते हैं, जो पैसे सब बांट लेते हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए।
0: तो वो पर महाराष्ट्र कहते हैं बॉम्बई साइड, ज्यादा उस तरफ होता है वो,
1: हाँ,
0: जो कृष्ण मटकी वाला कार्यक्रम,
1: हाँ,
0: क्योंकि ऐसा हुआ हम लोगों ने एक बार सूरीनाम में बनाए थे और खूब बड़ा में बनाया गया था कृष्ण जन्माष्टमी, तो वहाँ पर हम लोग वाटर कैंप में जा कर के वो बनाए और मटकी टांगा, अच्छा, गया, और लोग पहला बार हो रहा था सूरीनाम में कि बड़ा लोग को अच्छा लगा कि किस प्रकार से वो फोड़ा जाएगा वो मटकी। तो कौन साल के बाद, मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद है, तो सूरीनाम में हम लोग किए थे मंदिर सेवा धाम के साथ, और जो कार्यक्रम उन्होंने
1: अच्छा,
0: रखे थे,
1: बहुत ही बड़े,
0: तो बहुत बढ़िया लगा था। हम एक दो गीत जो चुन चुन करके रखे हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में, एक सुंदर सा गीत जो सोया सारा ने गाया है उसको चलाएंगे।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत जो सोया सारा के आवास में हम सब सुने, बबली जी कहने के तात्पर्य यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी को आप लोग को भारत में, क्योंकि हम लोगों ने सूरीनाम में, शांता जी अभी आप कह रहे थे कि जो ओपतोख आदि है, पर हम दैकफेल्ट के निवासी, लिफोर्नो निवासी, तो हम लोगों का वहाँ दो मंदिर थे, एक बुधवार को लगते थे, एक रविवार को लिफोर्नो में सुबह लगता था, पर हमें ये ख्याल नहीं कि हम लोग पहले बचपन में कि कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाए। बाद में पता चला धीरे धीरे जस जस बड़ा होते गए तो पलना आदि का कार्यक्रम देखने लगे, पर अब तो हर मंदिर में और कृष्ण जन्माष्टमी खूब धूम धड़ाका से सूरीनाम में मनाया जाता है। और ख़ास करके गत दिनों हमने सूरीनाम में गए तो गए थे निकेरी। निकेरी एक डिस्ट्रिक्ट है सूरीनाम में, तो वहाँ पर हर एक सड़क पे देखो एक मंदिर है। सड़कें ज़्यादा नहीं है वहाँ, पूरा निकेरी में एक लाइट है जो स्टॉपलेख कहते हैं ना, बत्ती कहते हैं, तो पूरा निकेरी में एक ही बत्ती एक हद सिर्फ, और सभी रास्ते खुले पड़े हुए हैं, पर रास्ते में ज़रूर आपको एक मंदिर मिलेगा। तो वहाँ पर भी कृष्ण जन्माष्टमी खूब धूम धड़ाका से और मनाया जाता है। आप इस पे हम सबको ये संदेश दे सकते हैं कि किस प्रकार का जो पोशाक होता है कृष्ण जन्माष्टमी के, क्या हमें कैसे पहनना चाहिए, कैसा किस रूप के पोशाक पहना जाता है ख़ास करके कृष्ण जन्माष्टमी को?
1: वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी में तो पीतांबर मतलब पीला वस्त्र ही धारण करते हैं, और जो आदमी लोग हैं वो एक धोती और कुर्ता और गले में दुपट्टा सा लेके और सिर पे एक टोपी सी लगा के करते हैं, और जो स्त्री लोग हैं वो गोपी वस्त्र पहनती हैं, उसमें लहंगा होता है तो बहुत सुंदर लगता है वो, तो जनरली। और भगवान को भी पीले वस्त्रों में ही सजाया जाता है, लेकिन भगवान के जो वस्त्र उस वक्त होते हैं वो देखने वाले होते हैं। और उस वक्त यदि कोई मेरे से पूछे कि दुनिया में सबसे सुंदर कपड़े किसके पास हैं और कौन पहनता है, तो सिर्फ एक और एक ही नाम है कि भगवान कृष्ण। उनकी पोशाक, उनके वस्त्र हर रोज देखने वाले होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि बस आंखें उनके वस्त्रों पर उनके ऊपर तो टिकती हैं और उनके वस्त्रों पर भी टिक जाती हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं।
0: कहते हैं कि कृष्ण भगवान जैसा चलता है वैसा चलना किसी को आता नहीं, कृष्ण भगवान जैसे बोलता है वैसा बोलना किसी का आता नहीं, और जैसे कि आप पोशाक उसको कृष्ण भगवान के कहते हैं तो वो भी बिसौंदर है, वो भी बड़ा खूबसूरत
1: पोशाक भी कहीं नहीं मिलती, वो भगवान के पास और राधा राधा जी के दोनों का युगल स्वरूप होता है उसमें वो पहनते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा की युगल छवि तो बहुत सुंदर है ही, साथ में निगाह उनकी पोशाक से भी नहीं हटती है, बहुत ही प्यारी पोशाक, कढ़ाई वाली और उसमें सलमा सितारे का काम, गोटा पत्ती का काम, पूछो मत, कितना प्यारा लगता है कि बहुत बढ़िया लगता है।
0: और ख़ास करके इसमें ये बात भी है, अब देखो कार्यक्रम बन रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत, तो अभी हम लोग मूर्ति भगवान को ले लेते हैं ना, जयपुर जाते हैं और ले लेते हैं, दिल्ली में राम
1: मार्बल की
0: मार्बल के मूर्ति, पर गलती से कोई ले लिया कृष्ण भगवान के मूर्ति और लेकर चले आए, तो बाद में उसे ये ख्याल आता कि अरे कृष्ण तो राधा बिना आधा है, तो यानी कि कृष्ण भगवान और राधा जो दोनों साथ साथ रहते हैं, तो उस पर भी देख रहा हूँ बबली जी उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं, कह सकते हो बबली जी?
2: मैं ये कहना चाहती थी कि दो नहीं तीन चीज़ें होनी चाहिए, श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी और कृष्ण जी की बांसुरी, इन तीनों के बगैर वो अधूरे हैं।
0: वो बांसुरी भी होना चाहिए?
2: हाँ जी,
0: तो
2: क्योंकि बांसुरी में तो राधा जी हैं, इसलिए कृष्ण जी की बांसुरी के बगैर अधूरे हैं।
0: ऐसा इसमें शांता जी क्या कहने वाले हैं?
3: मैं तो गुम हो गई सुनकर ये। नहीं, वाकई में कहते हैं कि तीनों चीज साथ में रहना चाहिए, तब ये जाकर पूरा होता है।
2: जैसे राम दरबार में सब चीज़ होनी, चार चीज़ होनी चाहिए, वैसे कृष्ण जी के भी तीन चीज़ होनी चाहिए।
0: ऐसा
2: अब राम दरबार में राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, जब ये चारों नहीं होंगे तो राम दरबार अधूरा है।
0: तो राम दरबार अधूरा है। तो दोस्तों सुनने वालों, आप सुन रहे हैं कि ये सुंदर से संदेश जो यहाँ पर से दनहा शहर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी, जो दिल्ली से हम सबके पूरा ये संदेश उन्होंने और हम लोग के लिए रखने वाले हैं। हमारे प्लेयर पे एक गीत और आ गया है, देखते हैं कि वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, अगर ये गीत हम ना सुने कृष्ण जन्माष्टमी पे तो कुछ भी अधूरा हो जाएगा ना, तो क्यों ना वो गीत हम सुन लेते हैं।

0: वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, ये गीत हमारे बचपन से हम रेडियो पे सुनते आए हैं और अभी तलक ये गीत जो अभी तलक चलाया जाता है। शांता जी, इस गीत को आप भी बचपन में सुने होंगे।
1: बचपन में तो सुने हैं, हाँ, इसे तो हम बड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे कई साल पहले तो मैं भी ये गीत गाती थी, और आज भी जो हम भजन प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं जाते हैं हमारा अनौसर साथी जॉनी के साथ, तो ये जो मौका मिलता है तो हम भी ये सुना देते हैं भक्त प्राणियों के।
0: यानी कि मंदिरों में अभी तलक ये गीत को हम लोगों ने भजन कीर्तन समाज लोग
1: गाते
0: के साथ गाते हैं
1: जी।
0: और आज का संदेश में और क्या रखने वाले हैं बबली जी आप, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी उस दिन को क्या पकाया जाता है और खाने में क्या ज़्यादातर रात में आप लोगों ने बचपन में क्या मिलता था खाने को?
2: हम तो बचपन में जब व्रत रखते थे तो कोई मीठा खाता है तो वह ज़्यादातर मीठा ही खाते थे, और मीठे में खीर बनाई जाती थी, और सारा दिन व्रत करते थे, रात को खाते थे। मंदिर जाना, माथा टेकना, उसके बाद
0: मंदिर जाना, माथा टेकना, और उसके बाद में और जो भोजन का व्यवस्था किया जाता है।
2: हाँ जी।
0: शांता जी, आप इस साल मंदिरों हर, क्योंकि हॉलैंड में उतना ज़्यादा मंदिर तो है ही नहीं, फिर भी मंदिरों मंदिरों में जो जा कर के कृष्ण जन्माष्टमी का तैयारी हो रहा है जोर तोर से, तो इस बार आप कहाँ पर जा रहे
1: हैं? मैं जाऊँगी सिख्तमबर्ग।
0: सिख्तमबर्ग, वहाँ पर भी कार्यक्रम रखा गया?
1: वहाँ कार्यक्रम एकदम से आयोजन हो गया है और कर बड़े समारोह के साथ भी मनाया जाएगा। मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम में रिक्लाम कर रही हूँ।
0: हाँ, फिर भी यानी कि लोग जाने कि कहाँ पर कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्योंकि मंदिरों सब जो कल का कार्यक्रम में और भरा रहेगा, तो और भी स्थानों पे यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में और कार्यक्रम रखा जाएगा।
1: और कितने लोग तो आज ही से शुरुआत कर दी, इसको आरंभ हो गया है ना जी?
3: जी
1: हाँ,
3: बिल्कुल।
1: तिथि के अनुसार मैं देखती हूँ कि आज तिथि के अनुसार या उसे कहते हैं कि आज का तारीख भी है उसमें और कल का तारीख भी है।
3: यहाँ तो मेरे ख्याल नीदरलैंड में तो 5 तारीख को मनाया जा रहा है,
0: चार और पाँच।
3: ऐसे भारत में भी 4 और 5 ही है।
1: अच्छा, जैसे मनाए बस मनाए।
3: हाँ,
1: मनावे जाए तो याद करे कृष्ण जन्म अष्टमी को।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, हम अभी आज और भी संदेश रखने वाले हैं आपके लिए, और कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अगर राधा और बांसुरी बिना तो अधूरा है, तो दोनों साथ में लेना चाहिए। हम और भी गीतों को तैयारी कर चुके हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार मैंने प्लेयर पे रखे हुए है कि
3: ये जो अभी आपने गीत सुना वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, ये मिस मैरी पिक्चर से लिया गया है, और इसमें जो अभिनय किया है वो मीना कुमारी थी, इसमें किशोर कुमार थे, और जैमिनी गणेशन और जमुना, इनकी मुख्य भूमिका इन्होंने इस पिक्चर में अदा की है।
0: तो जैमिनी,
3: जैमिनी गणेशन,
0: जैमिनी गणेशन
3: जी।
0: तो एक ये ब्लैक एंड वाइट का समय का फिल्म है
3: शायद।
0: हाँ, अभी उस टाइम पे कलर तो लगभग 1970 से पहले आ गया था, पर ये उससे ढेर आगे का फिल्म है
3: जी। ये 1957 में बनी है।
0: 1957 तो मैं 60 नहीं पहुंचा था।
3: हाँ, जी।
0: 1957 का फिल्म। दोस्तों सुनो वालों, और एक प्रश्न और है मीनाक्षी जी, आपने स्कूलों पे कितने साल और जाकर के जो बच्चों को शिक्षा दिए है, तो स्कूल पे इस पे कॉलेज आदि कहाँ पर, वहाँ पर स्कूलों पे भी ऐसे कुछ मनाया जाता था?
3: खैर, मैं वैसे स्कूलों से तो मेरा जुड़ाव नहीं रहा, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का तो पारिवारिक त्यौहार है, जो कि मेन मुख्य रूप से घरों में ही अपने अपने घरों में परिवारों में ही मनाया जाता था, तो संस्थाओं से इसका कोई त्यौहार का जुड़ाव नहीं था। जैसे कि हमारे कॉलेज में बस कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है ये सबको पता होता था, लेकिन उससे संबंधित कोई कुछ किया नहीं जाता था,
0: कोई स्पेशल नहीं होते थे। और कृष्ण जन्माष्टमी क्योंकि आज से कुछ 25 साल पहले बबली जी ने सूरीनाम को पहला बार दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर होली और वो त्यौहार है जो फ्री नहीं मिलता, यानी कि नेशनल डे नहीं है। तो उस समय 25 साल पहले के बात है, तो ऐसा धीरे धीरे समय बदलते गया और आज देखो सूरीनाम में भी होली और दिवाली ये एक
3: मुख्य त्यौहार
0: हो गया, जबकि सूरीनाम में अन्य यानी कि और भी जाति रहते हैं पर हिंदुओं के लिए एक नेशनल डे हो गया।
3: जी जी बिल्कुल।
0: तो ये कृष्ण जन्माष्टमी वो एक नेशनल डे नहीं है जो भारत में
3: है। मतलब पारिवारिक त्यौहार है, परिवार में सब लोग व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, सुंदर पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को पंजीरी का और पंचामृत का भोग लगाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। स्कूलों की छुट्टी हो जाती है जिससे बच्चे अपने त्योहारों के प्रति संस्कार को सीख सकें।

0: ये सुंदर सा गीत एक फिल्म जिसमें राजेश खन्ना ने काम किए थे, पुराना फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में। सुनने वालों, हमारे साथ जुड़ गए हमारे कोलेगा खास साथी अनुराधा जी, जो इंडिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुराधा जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है, और हार्दिक से स्वागत करते हुए आज आप क्या संदेश में रखने वाले हैं?
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। आज मैं सभी को भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित थोड़ी कहानियाँ सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। तो आपने देखिए, भगवान श्री कृष्ण, हे परम प्रिय कृष्ण, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के साथ कुछ विशेष गुण जुड़े होते हैं। जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ध्यान में बैठे हुए भगवान शिव का शांत

0: इसी प्रकार देवी दुर्गा की छवि देवी माँ की ही तरह दिखती है, किंतु भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है जिनके साथ अनेकों गुण जुड़े हैं। वे ऐसी देवता हैं जिन्होंने अपने शैव काल में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध किया था तथा अपनी माँ यशोदा को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। उनको एक नटखट चंचल बालक के रूप में भी जाना जाता है जो बचपन में माखन चुराकर खाया करते थे, जिसने विशाल नाग कालिया को हराया तथा गोपियों संग मस्ती और लीलाएं करी। अब बाद में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता के रूप में अर्जुन को परम ज्ञान दिया। देखिए, श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव कुछ विशेष गुणों सहित, जिन्हें कलाएं कहा गया है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अधिकतम यह संख्या 16 हो सकती है, जिनके होने पर वह जीव संपूर्ण अवतार हो जाता है। तो श्री कृष्ण भी इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, वो उनको विष्णु का अवतार माना जाता है और बहुत सारे उनसे संबंधित कहानियां हैं। तो संजय जी, मैं आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक सुंदर सा गीत हो जाए,
1: फिर मैं आगे बताती। बिल्कुल, एक सुंदर सा गीत मैं चलाने के कोशिश में हूँ, पर पता नहीं है शांता जी पिटारा से भर के क्या लाया है। शांता जी, आज आप पिटारा से भर कर क्या लेकर आए, बताइए थोड़ा से।
2: एक बहुत खूबसूरत गीत जिसका बोल है, मोर बोले चकोर बोले।
1: मोर बोले चकोर बोले,
2: हाँ, लता जी के गाई हुई गीत है। फिल्म का नाम हम देखे तो फिल्म का नाम है गौरी,
1: पर माइक्रोफोन से दूरी खड़ा होकर बोल रहे थे तो
2: नहीं। मैं देखती हूँ यहाँ पे जो लाइट है ना, सेंसर वो जोर जोर चल रहा है।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, मोर बोले चकोर बोले, ये सुंदर सा गीत शांता जी जो अपना पिटारा से लेकर आए हैं, हम चलाते आपके लिए।

बांसुरिया की तान, बांसुरिया की तान, मरते मरते फिर से आ गई, फिर से आ गई जान में मेरी जान।

मोर बोले चकोर बोले। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ से कार्यक्रम जो कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में हम बना रहे हैं, और अनुराधा जी जो और भी संदेश रखने वाले हैं हम सबके लिए,

0: सुनने वालों चलिए आगे बढ़ा जाए और कृष्ण जी के बारे में थोड़ा और पता करते हैं। देखिए ये कहानी है श्रीमद् भगवत में कृष्ण जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता किसी भगवान को उनके बालपन वाले रूप में दर्शन करना अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है जिसके लिए देवता लोग भी युगों तक राह देखते हैं। एक बड़ी लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भी योगी का रूप धारण कर गोकुल आए थे ताकि भगवान कृष्ण को बाल रूप में देख सकें। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए हैं। तथापि इस घटना से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है जिसके विषय में चंद लोगों को ही जानकारी है। तो श्रीमद् भगवत के अनुसार यह देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऋषि नारद ने भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि यह जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव व भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों यह बताते थे कि वह दूसरे के भक्त हैं। उस समय ऋषि नारद ने उन दोनों से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, यह सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं इसलिए वे स्वतः ही उनके यानी कि शिव के भक्त हो जाते हैं। यह वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। यह उन अनेक उदाहरणों में पहला अवसर था जब भगवान कृष्ण ने यह कहा कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। वह उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे पूरे ब्रह्मांड के लिए भगवान हो परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं का ही पालन करेंगे। जैसे भगवान शिव को देवों के देव माना जाता है भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में जाना जाता है। तो संजय जी कितनी सुंदर मतलब ये जब हम सुनते हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण को लेकर कितनी सुंदर कथाएं हैं और उनका कितना सुंदर रूप था, कितने भगवान को हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो मैं और आगे उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाऊंगी। तो चलिए एक गीत सुना जाए फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जरूर एक गीत की ओर बढ़ेंगे और ये सुंदर सा संदेश जो आपने रखे कि भगवान स्वयं भगवान शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कितना लालसा था ना। देखो अपना अपना युग का कथा होता है और ये जो वृतांत आपने सुनाए ऐसे भी जबकि रामायण का समय जो कि सतयुग का कथा है वहाँ पर भी राम जी का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कितना लालसा हो रहा था ना। अब देखा जाए कि बालकांड में नेघन फेरतख 49वां दोहा में वर्णन किया गया है कि भगवान को समझने के लिए संत मुनियों ऋषियों का ज्ञान होना चाहिए। हम जैसे आम व्यक्ति कुछ और देखेंगे और कुछ और समझेंगे। ऐसे कि हर साल में भी देखो भारत में ज़्यादातर में बनाया जाता है रील फिल्म बनाया जाता है, तो कुछ बच्चे हैं, कुछ कभी कभी कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े हैं और उस पे निकाल देते हैं फिल्म, यानी कि पूरा कथा शायद समझते नहीं है और उसी पे कुछ ना कुछ बनाकर निकाल देते हैं, कुछ कभी उल्टा बात तो कभी सीधा बात को भी और वृतांत को और समझाते हैं। दोस्तों हम ये कृष्ण जन्माष्टमी के और भी संदेश सुनने वाले हैं, पर अनुराधा जी आपके गुजारिश पर हम एक सुंदर सा गीत चुन करके रखे हुए हैं जुबिन नुतियाल के आवाज़ में, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।

0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये सुंदर सा गीत हम सुने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनुराधा जी और भी संदेश रखने वाले हैं, तो अनुराधा जी मैं यही प्रश्न रखूंगा आपके कि संदेशों में संदेश कृष्ण जन्माष्टमी के और क्या सुनाने वाले हैं आप?
1: पीले अमृत प्यासे।
2: चलिए सुनने वालों आगे बढ़ा जाए। तो श्री कृष्ण की जब बात की जाए और गोपियों की बात ना करें तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोपियां और श्री कृष्ण एक ही, आपस में गोपियों को कितना श्री कृष्ण से प्रेम था और कृष्ण भगवान भी गोपियों से उनको बहुत प्रेम और बहुत लगाव था। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषय में कथा कहानियों का बयान करना कठिन होगा। कहा जाता है कि एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक ठाटदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रतिकार पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम और बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उन्होंने घंटों बहुत मेहनत करने के पश्चात उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में, बहुत सुंदर सुंदर बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद राय के घर सब गोपियां चल कर आने लगी कि हम श्री कृष्ण को अपने हाथों का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। जब उन्होंने नंद जी के घर में जब वो पहुंची, कृष्ण के घर जब वो पहुंची तो उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि पहले से ही नंद जी के घर में कोई अतिथि वहाँ खाने के लिए आए हुए हैं और वो सब वहीं पर चारों ओर वहीं पर उधर बैठे हुए और सब खाना खा रहे थे तथा कृष्ण वहाँ सबका भोजन चल रहा था उनका पहले से ही, और कृष्ण जो थे उनके बीच में बैठे थे और उनकी माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे ही जो मेहमान थे, जो अतिथि अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें बहुत ही ग्लानी यानी कि बहुत बुरा सा भी लगा, महसूस हुआ होने लगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी इतना सारा भोजन उन्होंने अभी लिया था। अब उनको लगने लगा कि हमने तो इतना सारा अभी भोजन अभी अभी तो करा है, अब ये बेचारी गोपियाँ इतना ज़्यादा इतना सारा खाना खुद बनाकर लाई हैं। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देखकर गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा, क्योंकि अब वो कैसे खिलाएंगी, क्योंकि सभी का पेट भर सबने खाना खा चुके थे सब और हाथ भी सबने धो लिए थे, तो अब तो कोई और कुछ खाने की ही गुंजाइश नहीं थी। तो अब सब अतिथि लोग जितने थे सोचने लगे बेचारी गोपियों का तो दिल टूट जाएगा, तो कैसे अब वो बेचारे इतना मेहनत करके खाना लाए तो क्या होगा, व्यर्थ गया सब, उनकी मेहनत व्यर्थ गई। किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान कृष्ण पर ही थी और वे उनकी ओर देखे जा रही थी। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगी। सब इतनी मुग्ध हो गई और कृष्ण जी को देखते ही वे सब नृत्य करने लगी। जो जितने अतिथि थे, नंद राय जो कृष्ण जी के पिताजी थे और माँ यशोदा और सभी जो आसपास जितने जो मेहमान थे, यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी ये गोपियाँ इतनी मस्त कैसे हो सकती हैं। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया कि आप बताएं वो आप लोग तो इतनी मेहनत करके खाना लाए और तब भी कृष्ण तो खाना खा चुके हैं और सब मेहमान हम सब खाना खाते और आप तब भी बड़े प्रसन्न होकर आप नृत्य कर रही हैं। तो गोपियों ने अपने उल्लास पूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वे तो यह सोच रही थी इतनी मेहनत से बनाए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा यह वह कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने भोजन कर लिया था और तृप्त थे, उनका पेट भर चुका था और वो बहुत संतुष्ट थे। इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं कि उन्होंने किसके हाथ का बना भोजन खाया क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। तो गोपियों ने तो बस जहाँ कृष्ण का जो चेहरा देखा और वो चेहरा देखते ही कि भाई वो कितने भोजन करके कितने तृप्त हो गए हैं, चाहे भले ही किसी और का भोजन खाया हो पर वो जो भाव उन्होंने देखा गोपियों ने वो उसी में मुग्ध हो गई। तो ऐसी अद्भुत कहानियां हैं कि जिनसे हम समझ सकते हैं कि देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की ऐसी गहरी भावना भर दें और कितनी महान वो गोपियां थीं जो अपने ईष्ट यानी कि भगवान के प्रति इतनी निष्ठा रखने में समर्थ थीं।
0: अनुराधा जी, ये सुंदर सा संदेश जो आपने रखे भगवान के प्रति, पर हमारे पास माता मीनाक्षी जी भी उपस्थित है और माता जी ये आप बताइए क्योंकि भगवान कृष्ण के कितने कथाएँ हैं ना, कितना सुंदर सुंदर रूप का कथाएँ है, आप उसमें से कुछ हम सबको लिए सुना सकते हैं?
3: जी हाँ, एक अभी मेरे मस्तिष्क में एक भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर कहानी अभी आ रही है सामने, तो मैं आपको उसी के विषय में बताना चाहती हूँ कि जो सूरदास जी थे तो वो उनकी आँखों में दृष्टि नहीं थी सूरदास जी की, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, इतने बड़े भक्त, जिसको कहते हैं ना भक्त और भगवान का जो संबंध होता है कि बिना भक्त के भगवान भी अधूरे हैं और बिना भगवान के भक्त तो अधूरा है ही है। तो वो ये कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है। तो एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी अपने गांव से किसी दूसरे गांव में किसी कार्य को के लिए गए थे, तो जब वापस आ रहे थे वहाँ से तो उनको आते हुए देर हो गई। तो रास्ते में जो जंगल पड़ता है वो तो था ही है, तो बहुत बहुत सारे 200-250-300 साल पहले की है ये कहानी। तो उस वक्त जो जैसे कुएं होते थे तो उस कुएं के चारों ओर एक दीवार बनी होती थी परकोटा, तो पहले तो कुओं के चारों ओर इस तरह की कोई दीवार थी नहीं। तो रात में हो गई देर, तो वो अपनी छड़ी से ठक ठक ठक ठक और आंखें थी नहीं, धीरे धीरे धीरे करके वो अपने गांव में आ रहे थे। तो पता नहीं रास्ते में वो कुआं था, एकदम अंधेरी रात, उनको दिखा नहीं और वो उस कुएं में गिर गए सूरदास जी। अब वो गिर गए, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि यदि वो कुछ आवाज़ भी लगाते तो कौन सुनता उनकी, क्योंकि वो तो सुनसान क्षेत्र में वो कुआं था। भगवान को ने देखा कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कुएं में गिर गया है, तो सीधी सी बात है भगवान को उनकी रक्षा के लिए तो पहुंचना पड़ेगा ही, क्योंकि भक्त के भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको ज्ञान। तो ये एक आपने गाना भी सुना होगा, ये बहुत ही सुंदर गाना है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? तो जी भगवान कृष्ण एक बालक का रूप करके वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, सूरदास जी को कुएं से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो सूरदास जी को तो पता लग ही गया था कि ये जो बालक रूप में है ये तो भगवान कृष्ण स्वयं है, ये कोई और दूसरा कोई बच्चा थोड़ी आया है। और उस अंधेरी रात में और एकांत जंगल में जहाँ की कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं है, वहाँ और कौन आ सकता है? तो उनको तो पता था कि ये भगवान कृष्ण ही आए हैं बालक रूप में, तो क्योंकि मेरी भी भक्ति बहुत मजबूत है तो इसलिए मेरी रक्षा करना तो भगवान को पड़ेगा ही। तो उन्होंने उनको उठा के कुएं से बाहर निकाला। तो सूरदास जी ने क्या किया, उनका हाथ जोर से पकड़ लिया भगवान का जो बालक रूप में आए थे। तो भगवान ने सोचा कि यदि ये मैं इसके साथ रह गया तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा कि जिसका जवाब सच पूछा जाए तो मेरे पास होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ झटका के और जाने लगे, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए आए थे वो तो उन्होंने पूरा कर दिया कि उनकी वो उनको उन सूरदास जी को बाहर निकालना था। तो जब वो हाथ झटका के जाने लगे तो सूरदास जी कहते हैं, कर झटकाए जात हो, कर माने हाथ, कि हाथ को तो झटका के तुम जा रहे हो, कर झटकाए जात हो निबल जान के मोए, निबल मीन्स कमजोर, तुम मेरा हाथ झटका के चले जा रहे हो, मेरे को कमजोर समझते हो, इसलिए हृदय से जब जाओगे तब मानूंगो तोए, कि मेरे हृदय से भी तो तुम जाके दिखाओ कभी, यदि तुम सच्ची के भगवान हो तो मेरे हृदय से जाके दिखाओ तब मैं मानूंगा कि तुम सच्ची में भगवान हो। तो भगवान ने कहा, भगवान ने सुन लिया उस बात को, लेकिन क्या करते, अपना सा मुँह बना के चल दिए। तो भक्त और भगवान का जो संबंध होता है बहुत गहरा संबंध होता है। अपने भक्त को किसी भी परिस्थिति में कठिनाई में देखकर भगवान उसकी मदद के लिए जरूर आते हैं। तो ये इतनी प्यारी कहानी लगती है मुझे कई बार कि मेरा मन इसको मैं जब याद करती हूँ तो बड़ा खुश होता है सुन सुन के। और सूरदास जी का तो सबको पता ही है, उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए क्या क्या अपने कितनी सारी उनकी भगवान के ऊपर पुस्तकें हैं, कितने दोहे हैं जो कि उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए लिखे हैं, और वो भी जबकि सूरदास थे, संसार को अपनी आँखों से इस संसार को नहीं देख सकते थे। ऐसे ही एक बार वृंदावन के मंदिर में थे सूरदास जी, तो मंदिर में वो दर्शन करने गए तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो बेचारों को भीड़ में कोई उधर धकेल देता कोई इस तरफ धकेल देता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ा और चले गए। तो बीच में फिर एक दो लोगों ने कहा, अरे बाबा आप तो सूरदास हो, क्यों बीच में घुस रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ क्या करोगे आके? तो उन्होंने कहा, मैं तो इसलिए आया हूँ, मुझे थोड़ी दिखेंगे भगवान, तो वो देख लेगा कि मैं आया हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे देख ले, इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं इतने सारे धक्के खा रहा हूँ। तो उस आदमी को एकदम चेहरा वो हो गया कि सच बात तो यही है कि हम तो भगवान के बहुत दर्शन करते हैं लेकिन वो भगवान हमको तो देखे। तो कह रहे हैं कि मैं तो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे दर्शन नहीं होंगे, मुझे पता है मेरी आंखें नहीं हैं लेकिन वो मेरे को देख लेंगे, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी बहुत कहानियाँ हैं, हृदय को
0: छू लेने वाला कहानियाँ हैं, इतने ढेर सारे कहानियाँ हैं कृष्ण भगवान का। अभी जब देखा जाए कि उनका मित्र का वृतांत जो है और जो बचपन का मित्र थे, कितने ढेर सारे कहानियाँ हैं। दोस्तों सुन वालों, हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में और भी संदेश आपके लिए हम सब रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम आपके लिए चलाए दोस्तों सुनने वालों, और भी संदेश है, और अनुराधा जी जो हम सब के लिए और भी संदेश रखने वाले हैं। तो अनुराधा जी, क्या और कौन सा संदेश और रखने वाले हैं आप, जरूर हम सबको सुनाइए।
1: तो चलिए आगे श्री कृष्ण की सुंदर और कहानियां सुनते हैं। तो ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक कहानी है और हमें सिखाती है कि ईश्वर का हर फैसला हमारे भले के लिए ही होता है, भले ही वह उस समय समझ में ना आए। तो एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण बेहद परेशान था, उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन वह अपनी परेशानी लेकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने दुखी मन से श्री कृष्ण को बताया कि हे महाराज, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मेरी पत्नी नदी के किनारे आई थी और जब वह अपने घड़े में पानी भर रही थी तो उसके कुछ मोती जो थे, बड़े बहुमूल्य मोती, वो पानी में जा गिरे और जहाँ पे वे पानी में बह गए, पानी जहाँ वह भर रही थी वहीं पर वो नदी में बह गए और मुझे एक भी मोती नहीं मिला, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। तो अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर बहुत दया आ गई। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, इनकी मदद कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए, क्योंकि वो जो गरीब आदमी था वो कह रहा था कि भाई एक ही उसके पास बड़ी, जो उसकी पत्नी के पास ऐसी चीज थी जो जिसका मूल्य था वो नदी में सब बह गए मोती। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने पास से दो तांबे के सिक्के निकाले और ब्राह्मण को दे दिए। उन्होंने कहा, यह लो और अब आगे मत जाना, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस अपने घर लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण भगवान को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वे दो सिक्के लेकर चुपचाप वापस चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा कि भगवान तो लोग को इतना लोग इतना महान मानते हैं, लेकिन मेरी इतनी बड़ी विपत्ति में मेरे को, मैंने उनसे कुछ मांगा, उन्होंने मुझे मदद के नाम पर केवल दो छोटे सिक्के दे दिए, इससे मेरा क्या होगा। वही ब्राह्मण जब लौट रहा था तभी नदी के पास से एक मछुआरा निकला जिसके जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। ब्राह्मण को उस मछली पर बड़ी दया आ गई। उसने सोचा कि ये दो सिक्के मेरे किसी काम के तो है नहीं, तो और ये मेरे कोई काम आने वाले नहीं है सिक्के, क्या करूँगा मैं इस सिक्कों का, क्यों ना मैं इन सिक्कों से इस मछली को खरीद लूँ और इसकी जान बचाकर इसको वापस मैं नदी में छोड़ दूँ, ताकि इसकी जान बच जाए और ये अपना जीवन आराम से नदी में अपना जीवन जिए। तो उसको बड़ी दया आ गई उस मछली पर। तो उसने, उस ब्राह्मण ने वे दोनों सिक्के उस मछुआरे को दे दिए और कहा, भैया ये मछली मुझे दे दो। और ब्राह्मण ने वो मछली लेकर नदी के पानी में उसको वापस छोड़ दिया। जैसी मछली पानी में तैरने लगी, उसके मुंह में से एक चीज निकली और वो क्या था, वो उसी ब्राह्मण का खोया हुआ उसकी पत्नी का मोती जो था वो उसी मछली के मुंह में था और उसी मछली के मुंह से वो मोती निकला जो नदी में बहने लगा। ब्राह्मण ने झट से उस मोती को हाथ में ले लिया और वो भगवान की इसी लीला को एकदम से श्री कृष्ण को याद करने लगा कि देखो, जिसको मैं सोच रहा था कि भाई भगवान ने मुझे नहीं दिया, तो उन्होंने वो दो सिक्के देकर मैंने किसी की मदद करी और मेरी मदद के कारण वो मछली बची और उस मछली के ही कारण मेरे को मेरा मोती वापस मिल गया। तो ये भगवान की लीला ही तो है। हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि भगवान की योजना पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर छोटी कार्रवाई के पीछे एक बड़ा चमत्कारी और एक सही कारण छिपा होता है। तो सुनने वालों, हमेशा याद रखिए, भगवान जो भी करता है वो आपका हमेशा भला ही करते हैं। जो आपको उस समय ना ही भला ही समझ में आए, पर उनके वो हमेशा ही आपका अच्छा सोचते हैं। और श्री कृष्ण का नाम लीजिए और उनके गुण गाइए। चलिए इन्हीं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ श्री कृष्ण की अच्छी लगी होंगी। और संजय जी, चलिए आगे गीत सुनाया जाए।
0: अनुराधा जी, बिल्कुल, गीत तो मैं चुन करके रखे हुए है, पर यहाँ पर बातचीत हो रहा है और शांता जी कह रहे हैं कि सुदामा जी के बारे में तो कुछ बातें चीत नहीं हुआ, तो क्यों ना उसके बारे में कौन सा कथा आपको पता है शांता जी? अब शांता जी पोजीशन ले रहे हैं तो
2: पोजीशन ले ली और रीढ़ की हड्डी सोझा कर ली तो बात करूं। सुदामा जी उनका कथा हम सब जानते कि सुदामा जी अति गरीब था। वो मांगना नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं। वो जिस अवस्था में था उसमें वो बहुत खुश था, ताकि उसका घर में आना अन्न तक इतनी कमी ताई हो गया था, बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं। पत्नी उसका कह रही थी कि आपका दोस्त तो इतना महान है कृष्ण जी, आप क्यों नहीं उसके पास जाते हो। ऐसे बोलते बोलते बोलते तो एक बार तो सुदामा जी कृष्ण के द्वार पहुँचे, ऐसा है ना? हाँ, तो द्वारपाल वहाँ पहुँचे तब
3: थोड़े से चावल पोटली में लेके।
2: हाँ जी, वो भी मांग करना। हाँ, तो अच्छा, द्वार पर जो पहुँचे तो वहाँ जो पहरेदार जो था वहाँ तो उसको अंदर नहीं जाने दिया, और वो गिड़गिड़ाते बोलते थे कि नहीं मैं उनका दोस्त हूँ। वो पहरेदार जो है ना, उनका होलिया देख थे और कहते ये
3: कपड़े,
2: हाँ आप कैसे उनका दोस्त हो सकते हैं। और गरीब ताई उनका इस तरह से हुआ जिसे मैंने कथा सुनी और पढ़ी हूँ। तो जो सुदामा जी और कृष्ण जी वन में गए लकड़ियाँ खोजने के लिए माँ के खातिर, चूल्हा जलाने के लिए, तो उस समय जब गए थे तो उस रात में बारिश जो हुआ तो सुदामा जी के पास माता जी तो दे दिया था खाना, गुड़। हाँ, तो सुदामा जी वो गुड़ जो खाना था वो अकेले ही खा गया। और कृष्ण जी सुन रहा था ना कि उसका डांट बज रहा है कि कुछ खा रहे, तो सुदामा जी मांगे तो नहीं दिया उसको, और इस तरह से वो गरीब हो गया। पर सुदामा जी एक ऐसा व्यक्ति था जो कैसे कहे, भक्त अगर आप भक्त में या लीन रहोगे तो आपके साथ जो घटना होगा, होने वाला है, तो आपको वो पता चल जाएगा, ऐसा है ना कि आगम एगो आगम हो जाएगा। तो ये सुदामा जी भी ऐसा एक व्यक्ति था। तो सुदामा जी को भी पता हो गया था कि जो खाना है वो शरापी थे, क्योंकि वो माता जी जो है उसके घर में भी आना नहीं अन्न नहीं था, वो मांग कर लाई और उसका घर में चोर आकर और उठा ले गया था, ऐसा है ना कथा?
3: वो थैली छोड़ गया था।
2: और थैली छोड़ गया था
3: और वो थैली उन्होंने सुदामा जी को दे दी कि बारिश होगी तुम दोनों बांट के खा लेना।
2: और वो थैली की अन्न जो है उसमें इतने शराब कैसे कहते उसको,
3: श्रापित भोजन
0: कहा जाता ना,
2: श्रापित, हाँ
3: श्रापित भोजन।
2: हाँ, तो ऐसा अन्न खाने से भी हम भी जो ऐसा अन्न खा ले तो ऐसा प्रभाव भी हो जाएगा, और उसमें भी शराब फूट गया था
4: जिस तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालों,

0: थी, गरीब था। अपना मित्र के पास गए बहुत विनती के साथ, पत्नी के विनती के साथ। तो सुदामा जी जो कृष्ण जी उनको जो देखे सुने तो वो गदगद हो गए,
1: भागे भागे आए,
0: भागे भागे। दुपट्टा कहाँ और कहाँ, चप्पल कहाँ, कुछ नहीं पता। बस वो दौड़ते दौड़ते अपना मित्र को गले लगाए और उसका भी अपना महल में ले गए ना। हाँ, उसको लेकर अपने आसन पे बैठाए और इतना गदगद के साथ कि उनका पत्नी जो है ना लाकर जल दिया धोने के लिए, तो जल तो एक तरफ वो उसका आंसुओं जो है उसके साथ उनका पैर जो है उसका धोआ दिया। और खाने पूछ रहे थे वो तो, कृष्णा जी तो अंतर्यामी तो वो भी पूछ रहे थे कि आप खाने में, भाभी ने खाने में क्या भेजा। तो वो पोटली, वो सुदामा जी इतना बड़का महल देखकर वो छोटी सी पोटली वो अपने कांधे में काख में दबा देना। तो इस तरह जो फिर से कृष्ण जी मांगे तो खाए। तो जिस जिस जय जय वो निवाला लिया ना, तेज तेज सुदामा जी उसके पास था। बस उनका घर जो उतना दूर था, उनका घर वो झोपड़ी से महल बना गया। हाँ, महल बन गया। फिर तो तीसरा निवाला भी लेना चाहते, तो पत्नी जो है कृष्ण जी के पत्नी वो रोक दिया, रोक दिया। क्योंकि कहा कि आप ये सब कुछ देगा तो आपके पास क्या रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा। तो उतने में भी सुदामा जी जो उनका शराब उनका ऊपर था वहाँ से कट गया।
2: कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, उस कन्हैया।
0: यात्रा भी इतना कठिन था कि आने बहुत सफर दूर था। तो सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए, ब्लारजन छाले पड़ गए। तो वो थका हारा सुबह वो उसका थोड़े दूर में जो उसका नींद आ गए। और कृष्णा तो लीलाकार है भाई, तो उसको उठाकर लाकर कुछ करीब महल के ऐसे धर दिया। तो वहाँ से फिर सुदामा जी जो जागे तो पूछते पूछते वो अपना दोस्त के महल, उसका दोस्त जो है कृष्ण जी, तो उनके द्वार पे आ गए। तो ऐसा सुदामा जी के कथा। और इसमें आप क्या बताना?
1: नहीं नहीं, शांता जी, मैं ये कहना चाहती थी कि आपको मालूम है सुदामा जी का एक मंदिर भी है
0: भारत में।
1: हाँ, गुजरात में।
0: बहुत अच्छा।
1: हाँ जी, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना है, हमने दर्शन किए हैं।
3: पोरबंदर में वो गुजरात में है वे मंदिर। पर कहने के मतलब ये है कि शांता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि आपने एक पूरा वृतांत सुनाए और माता जी भी और अनुराधा जी भी, हम अपने बच्चों के साथ क्यों ना ऐसे बैठ करके और अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कथाएं सुनाए, तभी हम लोग के संस्कृति सभ्यता और भाषा बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों सुनने वालों, शांता जी ने उंगली उठा दिया।
0: हाँ, जैसे आपने सुने कि सुदामा जी जो शरापित भोजन किया ना, खाना खाए, वैसे आज के दौर में भी हम खरीद कर खाते हैं। और अन्य घर में भी हम जाते हैं तो हम भी वहाँ पे खा लेते हैं। हमको पता नहीं है कि वो किस तरह से अपना अन्न तैयार किया है। तो वो भी कहावत ना, खाओ अन्न पानी पियो, ऐसे
3: कहावत तो आपने कह दिए, पर पानी पियो ऐसे
1: कहते हैं जैसे खाया अन्न वैसे होगा मन।
0: जी, जैसे पियो पानी वैसा होगा वाणी।
1: हाँ जी,
0: हाँ ऐसा ऐसा तो बोल कर गए। इसमें बहुत गहराई है। अगर हम भी भोजन तैयार करें अपना रसोई घर में, तो मंत्र धर दे, भजन धर दे, उसका असर उसमें भी पड़ेगा।
1: हाँ, कहते हैं अगर भजन गाते गाते अरे भोजन बनाओ, हाँ, तो और स्वादिष्ट और उसमें रस आता है।
0: वह सही है। ऐसे कई कथा में सुने, अरे कथा नहीं सुने, लोग बात करते थे, बात करते हैं ऐसे कि वो गुस्सा में होकर एक पत्नी अपने पति के लिए, अरे घर में भोजन तैयार करता था करती थी, तो वो गुस्सा होकर और वो भोजन तैयार करती थी। और पति जो आए तो उसको परोस दी, तो जो कड़वाहट ना है, कड़वाहट जो है वो खाने में भी हो गए, तो पति आए खाए तो उसको भी कड़वाहट हो गए। तो ऐसा असर करता है कि जो आप तैयार करो, जहाँ जाओ, जैसे भी, तो मधुर वाणी बोलो। जैसे आपने कहा कि जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन।
1: हाँ जी,
0: हाँ। और ऐसा भी मैंने सुनी है कि जहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ बैठे ना, एक गिलास पानी धरा है और हम नहीं ख्याल करते कि वहाँ पानी धरा, पर हम अनाप शनाप बढ़ते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो वो सब जो तरल है ना, त्रैलिंग जो है, वो सब भी वो जल में जो है उसमें भी प्रभावित हो जाता है, जो हम पिएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो ख्याल करना, हम जब मैं ये सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं भी कहूँ बैठी हूँ ना, अगर मेरे सामने पानी है और मैं जो पीना चाहती हूँ तो सोचती हूँ मैं कौन बात की है, किसने कौन बात की है, नहीं, पानी में फेंक देती हूँ फिर जाकर लाती हूँ। तो वाकई में ये ऐसा वैसा नहीं है बोली कि जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो वाणी, जैसे पियो पानी वैसा हुए बने वाणी। अब देख लो ना, बाबल वाटर, बाबल वाटर आप समझते हो ना?
1: नहीं, मैं
0: शराब।
1: ओ अच्छा अच्छा।
0: आप शराब पी लो तो देखो क्या हालत होता है,
1: आदमी डगमगाता है।
0: हाँ,
1: ऊट पटांग बोलते हैं अगर चढ़ जाए ज्यादा शराब पियो। एक आदम
2: लागे छूटे ना।
3: आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शांता खेमाई जी ने कितना सुंदर संदेश दिए, माता मीनाक्षी जी ने, और अनुराधा जी ने, बबली जी भी कुछ कुछ संदेश रखे। और जरूर इस पे ध्यान दे कि हम अपने बच्चों के साथ ये कहानियों को बांटे, तभी हमारे बच्चों ये कहानियों को सुनेंगे और आगे में जान पाएंगे। हम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से और ये प्रोग्राम बनाते हैं, धन्यवाद किया जाता है हमारा डायरेक्टर को जो हमें ये अवसर देता है। हमारे कोलेखा जो भारत से और यहाँ से सभी समय निकाल करके ये कार्यक्रम को बनाते हैं,

इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वह सबसे ज़्यादा अमीर है, अगर शांति है तो सबसे ज़्यादा सुखी है, और अगर स्वास्थ्य है तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ न था, नज़र उठा के देखा तो सिर पर मेरे सद्गुरु का हाथ था।

तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ, हे कृष्णा मेरी तो किस्मत ही बदल गई। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, ज्योति का प्रकाश यहाँ से आपको जैसे पता है संपूर्ण होने को आ गए हैं, और आप सब हमारे साथ दी है कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष पर। तो आप सभी को हार्दिक से भी बधाई है ये जन्मदिन जो आप मनाने जा रहे हो, और साथ ही साथ जो आप याद करोगे कृष्ण को तो मेरी को भी याद कर लेना, मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेना। आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ सुनने के लिए। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: दूर से करीब निशाना है तेरा, ये लागी छूटे ना। ये गीत से हमें इस बात को पता चल गया कि हमारे कार्यक्रम अपने और अंत सीमा पे आकर के पहुँचे हैं। आज के सहयोगी हमारे साथी शांता खेमाई, बबली आसरा, मीनाक्षी जी, अनुराधा जी जो भारत से हम सबको संदेश दिए, मैं आपका सेवक संजय यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे, और आशा यही है कि कुछ न कुछ लाभदायक बातें आप जरूर सुने होंगे, जैसे कि आज का संदेश में भी आप सुने कि कुछ कथाएं जरूर अपने बच्चों के साथ बांटना, ताकि वो जाने कि हमारे संस्कृति सभ्यता और संस्कार क्या है। दोस्तों हम फिर मिलेंगे, और शांता जी कुछ कहने चाहते हैं।
0: हाँ, खाना बनाना हो पीना हो तो अपना घर में बनाओ, अपना घर में खाओ, अपने घर में पियो। बाहर का खाना ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस अवस्था में वो सब बनाते हैं।
2: हाँ, पता नहीं किस अवस्था में वो सब बनाते हैं। हाँ, तो घर अपना भोजन करना, घर पकाना, घर खाना, घर का पानी पीना, घर का भोजन करना।
1: नमस्कार।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन आयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान ने लिंब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दाया भाग रोग से परेशानी, तालू का बाया भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दाया भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बाया भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले, कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले, कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग दुर्भाग्य है, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आएं तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर ले। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

चलो हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

film. जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, ओ बाबुल प्यारे, लता मंगेशकर जी की आवाज में सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970। सुनो, मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं

और कहा जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनो वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे, और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं,

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

सैनी काला गया नहीं सेवंतर से कहीं दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है। और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है। और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे बीते हुए वक्त। बीते हुए वक्त और बीता हुआ बचपन

0: कर आएंगे,
1: वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत 1971, किशोर कुमार जी की आवाज में। एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना, जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। और जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। शब्द प्रयोग करो।

जहां कभी गर्म ना होवे। जला भी ना दे।

माइलो फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। अ ब्रोकन हार्ट सॉन्ग

रहता जो वफा आप हमारे होते। दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानो ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनने वालों, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रा

दोस्तों, ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारी उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

और सुनने वालों, मनुष्य को ठंड और घमंड दोनों के विचार सहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

एक गीत जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में हम सब सुने, जो एक लाइव परफॉर्मेंस का और यानी कि उपत्रीद के जो रिकॉर्ड किया गया है, और इतना सुंदर सा गीत जो उन्होंने यो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। क्या हम कभी किसी से वादा किए हैं? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न रखते हैं कि कभी न कभी कोई वादा हम नहीं निभाए हैं?

सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में हैं, तो कहा जाता है दोस्तों कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटे बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार, ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनहा कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

दोस्तों ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों, ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सुनने वालों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और जिसमें जॉनी भाई, भाई गंगा जी और भाई सेतु जी भी सहयोग दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भाई जॉनी जी भी आज इतना हम लोग को सेवा किया, क्यों ना आप अपने पत्नी के लिए एक गीत को मांग करो। जॉनी भाई,
1: भैया संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें मौका दिए आज माइक्रोफोन के सामने बुलाने के लिए। और साथ ही साथ भैया गंगा भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, चना घुघरी खा रहे हैं, और अभी अभी भैया यूसेफ भी यहाँ पे है, डोक्सा रोटी तुरान है, और उसके जो मशुका है डोक्सा बना इसे भैया संजय जी, और खाना पीना भैल है, और उसके उसके मशुका का नाम है हमारे ख्याल से सीला का। इतना ढेर लोगों नाम ले लिए, कभी भुलाई से किला उसे। तो शीला जी, आपकी
0: सवाल ये था जॉनी भाई कि आप भी कुछ खाना पीना के बना कर लेकर आए हैं स्टूडियो में, और क्यों ना आप अपने पत्नी के लिए, क्योंकि यूसुफ भाई तो अभी कुछ चलवाने वाले हैं शीला जी के लिए।
1: अच्छा, तो मेरा बीबी ने आज लोग को पता चला, वैसे तो लोग जानते थे मैं कुंवारा हूँ लेकिन ऐसा किया कि आप लोग जान गए कि मैं एक शादी वाला हूँ भैया गंगा।
2: हाँ, हम सोच रहे ले। अच्छा, हम अपने छोटकी के बहुत बहुत धन्यवाद देला कि जो चटनी उन्होंने बनाई है वह क्या अव्वल दर्जे का चटनी था। एक प्रस्ताव भैया जॉनी ने रखा कि बताइए कि चटनी किस चीज़ की बनी हुई है, तो मैं तो नहीं बना सका बता सका।
1: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 4 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन, यदि बाएं भाग वाला शकुन, बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन, अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं। जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखट पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन। सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घुड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे।

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियाँ या मल के ढेर पर, शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दे तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंग को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञा बाई, पुरुष संज्ञा दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, छुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई और शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई और गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीखंड, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीछ, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीछ और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाईं ओर होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का भय होता है।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर बिल में रहते हैं और जो जिनका नाम लेना और सुनना भी शुभ समझा जाता है और उनको देखना भी शुभ समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन रात में विचरते शकुन, जो दिन में विचरते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें दिन में दिखाई देती हैं, बगुला, बंजुल, कौआ,

लो, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश, जो दिन रात्रि में विचरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, कोयल, सारवत, हंस और सुअर। विभिन्न दिशाओं में मिलना शुभ। पूर्व में घोड़ा, सफेद वस्तु। दक्षिण में मांस, शव। पश्चिम में कन्या और दरी। उत्तर में ब्राह्मण, साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है, और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है, कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए, वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों, बनई न बर्तन बानी बर्ता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चापू बाम देसी ले, मन हो सकल मगल कही दे। तो जब ये शगुन हुआ तो उनको नीलकंठ गायें दिखाई दी रास्ते में। सुनने वालों, दहिन काग सुख सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। तो इसका उनको रास्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकुल वह त्रिविधि बियारी, इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सगर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेफे दर्सु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजन दीनी दिखाई, क्षेमकारी कह क्षेम विषि, क्षेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की तो उनमें भी उसमें तब उनको क्षेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सूत्रु देखी, सन्मुख आयुधि अरुमीना, फिर उनको एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वीप प्रवीणा, फिर हाथ और दो दिखाई दिए। सुनने वालों,

रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तब काफ़ी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा। जब राज तिलक हुआ बज ही घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी। राम सिए तनु शकुन जमाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक सब प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति बकेसरी, शकुन प्रेत भेटे प्रिय केरी। करदूषण के लिए अंगहीन सूप नखा अमंगल की सूचक थी।

शाम घटा देखत नभ केरी, तहम वासम धनु मनो उमेरी। यानी कि पंचवटी में शुभ खादी आगे कर लीती, अशुभ रूप ज्योति नशा हीनी। कि शूर्पनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था सुनने वालों। राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा। सोची सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक शब्द करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, उल्लू पक्षी भयानक बोली बोलते हैं।

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठ ही गृद उड़ ही शिरन पर, भयाऊ काल वश का छू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन हुआ। जब अति भयो विहर अर्धाहु, फरेक्यु वाम नैन अरुबाहु, शकुन विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख में भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फरक ही बरही बार जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करण विचार।

छींक विचार। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महा अशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी समुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी।

शराब संघनी, पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबीन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। असान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम्भ और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइए, छींकत खाइए, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना चाहिए।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाई ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विघ्न होता है। व्यवसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा। अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित है यहाँ स्टूडियो में ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर और इसमें सहयोग देने वाले है शांता जी जो हमारे साथ उपस्थित है।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार हुए। जैसे आप सुन रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और राजेंद्र जी। यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। यही आशा उम्मीद है कि आप ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम पसंद करेंगे और हमारे साथ प्रेम और प्यार से बने रहें।
2: जैसा कि शांता जी ने कहा कि चांद अधूरा है रेडियो के बिना और रेडियो अधूरा है, संजय जी बोले कि उजाला कैसे है, तो मुझे लगा कि उजाला शांता जी की वजह से हुआ होगा और कुछ मौसम भी चेंज हुआ है, तो संजय जी बताइए कि उजाला एकदम अचानक कैसे हो गया।

आज हम सबका जो कार्यक्रम है बड़ा सुंदर सा और विषय रखा गया है, तो हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे, वो विषय की ओर बढ़ेंगे। हमारे कार्यक्रम में जो अभी तक घर पे बैठे हुए, क्योंकि ये एक बड़ा मज़ेदार कार्यक्रम होने वाले है आज, मन जिसका उदास है, तो पहले हम उदासी मन के अंतर्गत एक सुंदर सा अर्थ भरी और गीत को चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम सब और ये आज का विषय के बारे में बातचीत होगा।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों, सभी सुनने वालों से ये गीत, जो अर्थ भरी गीत जो हम सब सुने कि तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार। राजेंद्र जी, आज का और संदेश क्या है? हमने ये विषय जो आपने रखे है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, ये तो बड़ा गंभीरता बात है राजेंद्र जी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। इसी दुख की एक बात बताते हैं, जब सुनिए सौभाग्य बनता है तो समझिए कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। तो शुरू करते हैं महाराजा दशरथ की जी तरफ से। महाराजा दशरथ जी को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं, बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था।
0: यानी कि उन्हें ये इस बात पे उतना दुख होने पे, हम ये रामायण में बहुत से बार सुने हैं कि राजा दशरथ का और कोई संतान नहीं थे, फिर भी उनको हौसला होते थे।
1: जी,
0: तो आगे बताइए जरा कैसे, कि ये हौसला कैसे हो सकता है? कोई जब दुख होता है, किसी के बच्चे नहीं या कोई प्रकार कुछ जिसका इच्छा होता है,
1: हौसला ऐसे होता है कि जैसे आप किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ नहीं पा रहे हैं और पीछे से कोई पुश कर दे हल्का सा तो आप इजीली चढ़ जाते हैं। ऐसे ही राजा दशरथ जी को हौसला बनाने के लिए सब लोग कहते थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो हौसला बन जाता था। जब वह बहुत दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आता था। कालिदास ने रघुवंश दास में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। कालिदास जी ने एक लिखा है बुक, उसमें वो बुक का नाम है रघुवंश राय, रघुवंशम। रघुवंशम मतलब जो भगवान राम का वंश है, रघुवंश है। तो कालिदास ने उसको बहुत डिटेल में पूरा लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो रघुवंशम का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए।
0: और उसी कारण कहा जाता है कि राजा दशरथ रघुकुल के,
1: हाँ, रघुकुल रीति सदा चलाई, क्योंकि वो रघुवंशी थे। तो श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ को पता था कि श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा।
0: अब समझ में आया, क्योंकि ये हर बार ये जो अपना शाप को पाए थे, और यानी श्रवण कुमार के पिता से,
1: जी,
0: तो वही ख्याल आता था कि वो शाप अभी मिलना है।
1: हाँ, वो ख्याल आता था कि उन्होंने बोला कि अपने पुत्र के वियोग में आप तड़प तड़प के मरोगे, लेकिन उस समय संतान नहीं थी तो उनको ये ख्याल आता था कि उन्होंने श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में मरेंगे, इसका मतलब मुझे संतान प्राप्ति होगी।
0: ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो जाता है कि देखो रामायण के गहराई में कितना, और जा करके हम सबको ये सुंदर संदेश को आप कहाँ से निकाले?
1: ये तो सारा कुछ रामायण में ही है, और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा रहता है, और शांता जी भी रामायण बहुत पढ़ती है, तो कुछ शांता जी आप बताइए।
2: जी हाँ, रामायण तो मैं भी पढ़ती हूँ, पर ये जो योजन चल रहा है ना आज के, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगे कि दुख में भी सुख छिपा हुआ है। कितना दुखी होते हुए श्री दशरथ जी फिर भी ओके उतना खुश है, हो जा है कि पान शाप के कारण कहों पे दूर प्रकाश में, दूर दूर कहों पे ओके प्रकाशित।
0: यानी कि उन्हें ये बात का मालूम था कि हमें जो शाप मिला है श्रवण कुमार का पिता से, कि उनका पुत्र को इन्होंने और जाकर के जल स्थान से और तीर कमान से तीर चला दिया था ना अनजान में।
1: हाँ, एक बार एक कहानी है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों में यात्रा करा रहे थे, तो वो एक बार एक जगह पहुंचे, उनके माता पिता ने कहा कि उनको प्यास लगी, तो वो घड़ा लेके पानी भरने गए। जैसे वो जलाशय से पानी भर रहे थे तो जब पानी भरने की आवाज़ आई तो राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है और पानी पी रहा, उसके गले की आवाज़ है। तो उन्होंने वहीं से शब्द भेदी बाण चलाया और वो सीधा श्रवण कुमार के लगा। और जब उन्होंने कर आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा कि लगता कोई गलती हो गई। वो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा घोर पाप हो गया है और ये शब्द भेदी बाण से। तो उन्होंने फिर उनके माता पिता के पास उन्होंने बोला कि जाइए मेरे माता पिता को पानी पिलाइए, लेकिन उनको बताना नहीं पानी पीने से। बदले वही उन्होंने माता पिता ने वहीं पे उनको श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में मरेंगे, कुछ देर में फिर मर गए थे, वैसे आप भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है।
0: तो आपने इतना सुंदर से ये बात को सुना है, ये श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था।
1: नहीं, ये श्राप दशरथ को संतान प्राप्ति की याद दिलाता था कि आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी, तभी आपको पुत्र वियोग होगा। तो उनको हर समय रिमाइंड कराता था कि पुत्र प्राप्ति होगी ही।
0: चलो तब इस पे एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत और हम सबको सुना दीजिए राजेंद्र जी, जो कि शांता जी ने हम सबके लिए खोज खोज करके चुन चुन करके और रखे है।
1: जरूर जरूर।

0: वो साथी दुख में ही सुख है छिपा। तो बताइए संजय जी, आपको दुख में सुख कैसे छिपा हुआ दिखता है?
1: दुख में कैसे, सुख में कैसे या दुख में कैसे कौन छुपा रहता है?
0: दुख में सुख कैसे छिपा है और सुख में दुख कैसे छिपा है, दोनों वृतांत बताइए।
1: अब दोनों में कैसे मैं वृतांत बताऊं?
0: एक बता दीजिए, दूसरा शांति जी बता दीजिए।
1: चलो मैं एक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसा एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुआ था, जैसे आपने दशरथ जी का बताए ना
0: जी।
1: सुग्रीव जब माता सीता के खोज में वानर वीरों को पृथ्वी के अलग अलग अव दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये बात रहे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब माता सीता के खोज में सभी इकट्ठा हुआ
0: जी,
1: तो सुग्रीव जी वानर सेना सभी इकट्ठा करके और सभी के सीख दे रहा था, ये कह रहे थे कि आपको इस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, किस ओर को नहीं जाना है। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये स्वभाव देखकर, ये ज्ञान देखकर और उनसे ये प्रश्न कर बैठे कि सुग्रीव जी, आप ये वानर सेना को अलग अलग ओर भेज रहे हैं, कहीं कहीं कह रहे कि वहाँ जाने के कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने सुग्रीव से ये बात को जब पूछे तो सुग्रीव ने और ये कहे कि मैं कैसे बताऊँ। उन्होंने इस बात को कहा कि जब मेरे भाई बाली से मेरा और जबकि दुश्मन ही हो गया था ना भाई,
0: हाँ,
1: बाली से
0: उनका भाई, एक बार की कथा है कि बाली उनका दुश्मन कैसे हो गया था कि एक बार बाली एक राक्षस को मारते मारते गुफा में घुस गए और गुफा में घुसे तो उन्होंने बोला अपना भाई सुग्रीव को कि आप गुफा के बाहर इंतजार कीजिए मेरा, अगर मैं एक महीने के अंदर लौट आऊं बाहर आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं जिंदा आ गया और नहीं लौट सका तो समझ लेना मैं मर गया। तो सुग्रीव ने एक महीना इंतजार किया और बाली बाहर नहीं लौटा और एक दिन देखा तो उस गुफा के द्वार में पूरा खून की नदी बह के आई है, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि बाली मारा गया और उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया, गुफा बंद कर दी और घर आ गए। वहाँ से जब घर आ गए तो उन्होंने सोचा कि बाली मारा गया, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाल ली अनजाने में। लेकिन जब बाली आया, बाली जिंदा नहीं, वो राक्षस मरा था, बाली एकदम आया तो एकदम गुस्सा हो गया कि बताओ मैं वहाँ ऐसे ऐसे करने युद्ध करने के लिए गया, उस राक्षस का नाश करने के लिए गया और सुग्रीव यहाँ राजा बन गए। इस बात से वो बहुत
1: क्रोधित
0: हो गया और उसने सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तो तब से सुग्रीव बाली की डर से उसने पूरे संसार में, पूरे जगह,
1: पूरा पृथ्वी पे
0: जहां जहां

0: जगह और मैं जगह जगह भटकता था, सब दिशाओं का ज्ञान इसलिए ऐसे हो गया।
1: तो ये भी एक ऐसा संदेश है, अब हम सबको ये संदेश को प्राप्त होता है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। और यहाँ पर जब दुख है तो उन्होंने दुख के हितार्थ, और यानी कि मारा मार पृथ्वी पे चारों बगल घूमते फिरते रहे और उसमें कुछ ज्ञान प्राप्त किए, और वही ज्ञान को जो जाकर के सीता माँ के खोज में और प्रयोग किया गया।
0: सोचिए अगर सुग्रीव पर ये संकट ना आया होता तो उन्हें भूलोक का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है।
1: ये संदेश हुआ ना राजेंद्र जी, क्या बात है कि इस पे कुछ सुंदर सा और गीत रखेंगे आप?
0: जी जरूर। और इसके बाद एक छोटी सी बात और है, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी में हो। सदैव सकारात्मक रहे
1: कि क्या पता अगले किसी सुख के तैयारी में हो। ये हुआ संदेश राजेंद्र जी, एक सुंदर सा और गीत के ओर बढ़िए।
0: एक सुंदर सा नगमा पेश करते हैं।

0: यकीन और दुआ नजर नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो आप यहाँ से सुन रहे थे एक प्यारा सा भजन।
1: दोस्तों, ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जिसमें हम ये लक्ष्य लेकर आते हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में जो प्रकाश जल रहा है उसमें कोई ना कोई प्रकार से प्रकाश और आ सके। भाई राजेंद्र जी, जो आप सुंदर से और गीत को रखे, बड़ा सुंदर और संदेश उस गीत से हम सबको प्राप्त हुआ। पर हमारे शास्त्रों क्या कहते हैं कि जब सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। शास्त्रों इसके बारे में हम सबके क्या सुनाते हैं?
2: संजय जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम और ज्ञान भरा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र जो लिखे जाते हैं उनके अनुसार हर चीज शास्त्र में वही चीज लिखी जाती है जो काम की होती है और ज्ञान की होती है। तो शास्त्रों के अनुसार राम नाम ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और सभी देवताओं भी इसी में समाये हैं। जिसने राम नाम का जाप कर लिया वह अपना जीवन में तर जाता है। राम नाम ही महिमा, मनुष्य का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य की अनुभूतियों से भरा हुआ है। कभी मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तो कभी दुर्भाग्य की। सौभाग्य मनुष्य को निश्चित रूप से अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यह मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभव करते हैं कि दुर्भाग्य किसी के लिए पहाड़ के समान होता है तो किसी के लिए साधारण सी बात। यह जीवन के दो चापों के समान होता है। यदि एक का संतुलन बिगड़ जाए तो दूसरे को संतुलन रखने के लिए सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सिर्फ भगवान श्री राम का नाम। इस साधारण से नाम में असीम शक्ति छुपी है। इस नाम का सिर्फ स्वाद चखकर ही इसे बखान किया जा सकता है। एक सार्थक के नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों के नाम के महत्व को पहचाना। उन्होंने इस पूजनीय नाम की परख की और नामों के आगे लगने वाला चलन प्रारंभ किया। प्रत्येक परिवार में देखा जा सकता है कि बच्चे के जन्म राम के नाम के स्वर का होता है। राम में शिव, शिव में राम विद्यमान है। राम जी को शिव जी का महामंत्र माना गया है। राम सर्वमुक्त है। राम सभी की चेतना का सजीव नाम है। तो बताइए संजय जी, आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे
1: इसमें? तो बस यही प्रकाश डालना चाहूँगा कि भाई, दुनिया में वही शक उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है।
2: हाँ, हम लोग एक गीत की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा नगमा है।

0: कहानी।
1: तो ये शांता जी, आप क्या कहते हैं कि राम कहानी के बारे में?
2: श्री राम भगवान को नाम को नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको उसके बारे में संदेश देने वाले हैं।
3: काहे काहे हम सब राम राम जस्टिस जहाँ हम या भेटाए कोई के तो हम लोग राम राम करला। ओकर रहस्य उसमें ओकर अर्थ जो है वो भी हम जानना चाहते थे और हम खोज के आए ले, तो हम आए आप सबको भी बतलावे कहे के है राम
2: तो
3: राम।
2: ये राम राम तो बस ये हमारे समस्या जो है कि हम ऐसे जानते हैं कि हम हाथ जोड़ लेते हैं और राम राम कहते हैं, क्या वही है राम राम?
3: हाँ, राम राम वही है। और ये राम राम सिर्फ ना ऐसे ही कह दे, ऐसे राम राम कहना चाहिए कि जो प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तब जान ले वो भी इन वर्किंग आवे है। और कहे के राम राम ताकि राम अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट में हैगा एर सेफन त्वेंतक्ष्त लेतर है, सेफन त्वेंतक्ष्त अक्षर, और आ जो है उत्वेद लेतर है, और म जो एम है राम के वो है फैफन त्वेंतक्ष्त पे है। तो ये सब जो साथ है जोड़िए तो आवे हैगा
4: 54।
3: तो भले एक दफे जो बोलिए राम मतवेद, फिर जो बोलिए राम तो त्वे मार
4: 54
3: आ जाए द वर्ड दैट साम होन दैट आह। तो जैसे हम सब नॉर्मल माला जाप कर ला 108 नंबर के, ऐसे दिल से जो कोई बोले कि राम राम तो भले एक माला जाप हो जाए।
2: भाई राजेंद्र जी, आपने समझ गया कि राम राम का मतलब क्या है?
0: राम राम का मतलब बहुत ही अच्छा है, एकदम गहरा विषय है।
2: पर अभी तो आप हम सबको जो संदेश सुना रहे थे
0: जी,
2: अभी ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ा दवा है। पर अभी आप जो संदेश हम सबको दे रहे थे तो क्या उसमें कुछ और संदेश है कि बस वही थे?
0: नहीं, और बहुत संदेश है। जैसे कि राम नाम के बारे में तो बहुत कुछ संदेश रहता है। एक बार एक कुख्यात डाकू रत्नाकर नाम से प्रभावित हुई।
2: कौन डाकू?
0: रत्नाकर, रत्नाकर राम नाम से प्रभावित हुई और अंततः महर्षि वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए।
2: यानी कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को और निर्माण किए हैं,
0: जिन्होंने रामायण को लिखा है वाल्मीकि रामायण, वो पहले डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, वो डाकू थे। तो राम नाम की चैतन्य धारा से मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। यह नाम सर्वसमर्थ है। राम अपने भक्त को उसके हृदय की बास कर सौभाग्य प्रदान करते हैं।
2: विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो।
0: हाँ
2: ना, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाता है।
0: हाँ, लेकिन विचार
2: मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में रहती है।
0: यस, वेरी नाइस।
2: तो आप जैसे ये संदेश सुना रहे हैं कि श्री राम भगवान के, अभी आपने बताए कि रत्नाकर, ये तो मैं पहला बार सुना। हम सब तो ये कथन में कितने बार सुने थे कि वाल्मीकि जी, पर आज ये भी रख दिए आपने। और क्या संदेश है आपके ओर से राजेंद्र जी?
0: और दूसरा संदेश है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक श्री फल देने वाले राम नाम का ही है। इससे वधिक पशु पक्षी मनुष्य आदि तक तर जाते हैं। सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई ने अंततः यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कहा? क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में राम सबको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह नाम सबसे ज़्यादा सरल और सुरक्षित है। इसके जप से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस राम के जप के लिए आयु, स्थान, स्थिति, जाति जैसे बाहरी आवरण की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर
1: राम नाम का जाप किया जा सकता है।
2: वो तो जैसे कि अभी शांता जी ने भी सुनाए कि अपने ओर से, और उन्होंने तो बस गणित में भी हम सबको इस बात को सुनाए। दोस्तों, ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और आप जहाँ भी हो, दुनिया के कोई भी देश में ये कार्यक्रम को सुन रहे हो, तो सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि ज्योति का प्रकाश हम सब के लिए कुछ ना कुछ संदेश खोज खोज करके और लाते रहते हैं। कहावत है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है,
1: दुख का ताला किसने लगाया है अगर सुख की चाबी ढूंढ रहा है।
2: तो राजेंद्र जी, अभी ने जैसे कि आपने बड़ा सुंदर रूप से और ये वृतांत को सुनाए हम सबको
1: जी,
2: और कुछ सुंदर गीत है कि हम सब आगे बात कर सकते हैं?
1: नहीं, अभी एक गीत रहेगा, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो गीत के बोल रघुनंदन मोहम्मद रफी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है।
5: इंद्र आश्रित पारिजात है

0: रघुनंदन, जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय सियाराम। बताइए शांता जी, अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं डच में?
1: डच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, यानी कि पछतावा हेत फरलीद काय नित मेर फरामदर, और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता। चिंता यानी कि तुकोम्स काय नित फोरोइत लेफन, और वर्तमान का आनंद लेने ही जीवन का सच्चा सुख है, यानी वर्तमान दुस फंदाख लेफन एनत हेदन न्यू इस हेत आलर बलंग रेक्स तो मोमेंट वन वत मैं न्यू दूत दैट वर्ड दान हेत फरलेद एंड फोर बरेद फॉर द तुकोम्स।
2: शांता जी, इतना सुंदर संदेश को हम सबको दिया है कि भाई राजेंद्र जी, ये संदेश तो सुन के बस ये ख्याल आता है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारी कर्मी ही हमारा भाग्य लिखता है। राजेंद्र जी, इस के बारे में आपका क्या कहना है?
0: हाँ, इसके बारे में हम एक सरल रूप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड सुनाते हैं कि पॉजिटिविटी कैसे होती है, कैसे लोग का भाग्य कैसे क्या होता है। तो सुनिए, एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था।
2: इमारत क्या चीज़ होता है राजेंद्र जी?
0: इमारत मतलब कोई बिल्डिंग,
2: और यानी कि कुछ बड़े बन रहा था,
0: कोई बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मकान। मकान छोटा रूप बोलते हैं, लेकिन इमारत मतलब कोई महल टाइप का बन रहा था। वहाँ रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़ कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और काफ़ी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज दिन देखने के एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा क्यों नहीं होती है?
2: गार्ड के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: गार्ड का मतलब जो रेल में सबसे पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, वो सिग्नल देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पीछे से ठीक है। तो रेल बहुत लंबा होता है, बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो आगे ड्राइवर को पीछे का कुछ पता ही नहीं रहता, तो पीछे से बताता है कि आगे ये पूरा ठीक, इधर से सब सही है, तो आप चलते रहो चलते रहो। तो एक कपड़ा उसके हाथ में होता है, लाल एक हरा। अगर उसने लाल का भी कपड़ा दिखा दिया तो पीछे देख सकता है उससे, या तो वायरलेस से। तो वो कहता है कि लाल कपड़ा मतलब खतरा, तो रुको, और हरा मतलब चलते रहो, कोई बात नहीं,
2: चलते रहो गाड़ी।
0: हाँ, गाड़ी चलती रही। तो इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर एक खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आँखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं कभी अपने सवालों रंग के लिए, कभी अपने सांवले रंग, सांवले मतलब काला रंग, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, और कभी अपने कम मार्क्स, यानी इस एग्ज़ाम में जो नंबर मिलते हैं उसके लिए, कम जो मिले थे उसके लिए। कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। चील बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, और चिड़िया जो छोटे छोटे नीचे नीचे उड़ती है, तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं होती। क्यों नहीं होती?
2: क्योंकि उसमें वो ज्ञान नहीं है, वो अपना और ये इच्छा नहीं रखते कि मुझे भी वो चाहिए।
0: वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, उसके पास जो है उसी में मस्त रहती है, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं है।
2: जो है हमारे पास उसी में मगन रहो।
0: हाँ, मगर इंसान इंसान की ऊंची उड़ान देकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचे और खुश रहे, एक दूसरे की तुलना, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों नहीं, इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहें, तुलना से बचे, न किसी से ईर्ष्या न किसी से कोई हूड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। बताइए संजय जी, अब आप इसके विषय में कुछ पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, कुछ पूछना कहना नहीं चाहूँगा राजेंद्र जी, क्योंकि इस कार्यक्रम से हमें भी कुछ ना कुछ सीख मिलता है, और जैसे कि आपने इतने सुंदर संदेश को सुनाते रहते हैं, तो ये छोटी यानी कि ये जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। यही हमें अच्छा लगता है कि आप हम सबको ये सुंदर सुंदर संदेश हम सबको सुनाते हैं। मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ कहने वाला है।
1: वाकई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो ऐसे है कि लोगों को भरपूर सम्मान देना, जैसे आपने राजेंद्र जी का सुना है ना, लोगों को भरपूर सम्मान देना, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, अधिकार तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका संस्कार वो है।
2: आपके संस्कार वो है। देखो संदेश अच्छा, रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं राजेंद्र जी,
0: जी,
2: और एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ हम सबको ये ज्ञान बढ़ते हैं। हमारे जो मैं देख रहा हूँ पनील के आगे आपने कुछ गीत को भी तैयार रखे हुए हैं, तो पहले गीत को सुना दीजिए, तब फिर आगे हम सब कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
0: मनवा

0: भज ले राम राम राम। भाई राजेंद्र जी, बड़ा सुंदर सा और गीत को आपने सुनाए। हम जो आज का हमारे जो विषय था कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, आज कितने संदेश हम सबको सुनाए आपने।
1: नहीं, हम तो चाहते हैं, और अगर आप सुनना चाहे तो हम सुनाना क्यों ना चाहे। तो एक साखी है द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सुनने का और हम सुनाने का। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे।
0: भगवान को ऐसा कहे।
1: वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। यानी संगत जी, हम चाहे कितने ही निपुण विद्वान, बुद्धिमान, महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम सतगुरु है। इसलिए पूरे सतगुरु की शरण में लेकर पूरे समर्पण भाव से उस पर भरोसा रखो तो सब ठीक हो सकता है।
0: सुंदर संदेश जो आपने सुनाए राजेंद्र जी।
1: जी,
0: आज यहाँ पर की जो संदेश है कि एक खूबसूरत सोच ना, एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी को करते हैं जो हासिल ना हो सकता है, हम यही में पड़े रहते हैं। आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में कुछ ज्ञान के बातें खोज खोज करके आपके लिए यहाँ रखते हैं, और हम सभी एक और गीत है, या इस बार मुझे अवसर है कुछ सुनाने को राजेंद्र जी?
1: आप थोड़ा सा सुना सकते हैं, इसके बाद हम गीत शुरू करेंगे।
0: चलो थोड़ा से तो सुनाने को कोशिश करेंगे राजेंद्र जी। एक मैंने गत दिनों इस वृतांत को सुने
1: जी।
0: इस वृतांत को हमने सुने कि एक हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होता है। 90 किलोमीटर के स्पीड से वो दौड़ते हैं, और शेर के रफ्तार 58 किलोमीटर स्पीड से होते हैं। इसके बावजूद अक्सर हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है वो शेर से कमजोर है। यही खौफ उसे बार बार क्या करवाते हैं, पीछे मुड़ करके और देखने को मजबूर करता है
1: जी।
0: और हिरन को हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाता है। इसीलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, आप अपने सपनों और लक्ष्य पर रहिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
1: हाँ,
0: तो ये संदेश जो हम आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए रखे कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर यकीन रखिए।
1: हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत और ज्यादा बनानी चाहिए। तो इसलिए हिरन का शिकार इसीलिए हो जाता है कि हिरन यही सोचता है कि मुझे पे शेर ज़्यादा बलवान है, वो मेरे पे हिम्मत नहीं, जबकि वो ज़्यादा भाग सकता है। तो इसलिए हिम्मत हाँ, अगर रखेंगे तो बच सकते हैं।
0: तो और आगे बढ़ते चलना, जो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं वो उसी का यानी कि हानि में आ जाता है।
1: हाँ,
0: हम एक सुंदर सा नगमा की ओर फिर बढ़ते हैं, और आगे कार्यक्रम इसी प्रकार से चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ और ज्ञान के बातें संदेश हम सब और लेकर के आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।
1: हाँ, जो गाने के बोल हैं वो है, मुझे अपनी शरण में ले ले राम।

0: हम सब ये सुंदर से गीत को सुने और आज का विषय जो कि है सुख में सब साथी दुख में ना कोई, तो इस बात पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं ना, कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। और एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ कौन मिलते हैं?
1: दुख में कोई एक ही मिलता है,
2: सारे साथी कम।
1: और जो एक दुख में मिलता है वही सोचो आपका साथी है। इसलिए अगर आपको साथी की पहचान करनी है तो आपको दुख के समय करनी होगी,
0: तभी सही साथी का पहचान आपको मिल पाएगा।
2: जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल है।
0: बढ़िया साथी, शांता जी ने कहा कि बढ़िया साथी मिलना, और यानी कि जो संकट में यानी कि जो दुख के घड़ी में आपका साथ दे वही साथी आपका अनमोल कहा जाता है। राजेंद्र जी, आज हम सब अभी धीरे धीरे